मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून 2026। अभी प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई

0: आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रूपये की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 6:05 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

प्रातःकालीन भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदना में मैं अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भोर की पहली किरण जब धरती को आलोकित करती है तब प्रकृति का कण कण ईश्वर की महिमा का गुणगान करता सा प्रतीत होता है। ये समय है मन को सकारात्मक विचारों से भरने और प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करने का। आइए इसी पावन भावना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस प्रथम भक्ति रचना से।

प्रभु का नाम है जीवन का आधार, जिससे मिलता है मन को सच्चा प्यार। हर पल उसका स्मरण करते रहिए, यही है सुख और शांति का द्वार।

प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संवाद है। जब मन श्रद्धा से भर जाता है, तब हर क्षण पूजा बन जाता है।

संतों ने कहा है कि ईश्वर हमारे भीतर ही निवास करता है, आवश्यकता केवल उसे अनुभव करने की है। जब मन में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव जागृत होता है, तब प्रभु की अनुभूति सहज हो जाती है।

जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है वो हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, संगीत सतीश भाटिया का। उसके बाद खेती में आज, उसमें आप सुनेंगे जून माह के कृषि कार्य। सवेरे 7 बजे सदाबहार नगमे और उसके बाद सुगम संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे। सुबह 8:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सुबह 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से प्रसारित किए जाएंगे। 9:10 से नमस्कार उदयपुर जारी रहेगा। सुबह 9:30 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 से 11 फिल्म संगीत, शास्त्रीय संगीत का आनंद आप लेंगे सुबह 11 बजे। 11:30 से 12 आप सुनेंगे सुगम संगीत। दोपहर 12 से 1 फिल्म संगीत। दोपहर 1 बजे आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, प्रसारण जयपुर से किया जाएगा।

1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम सहेलियां रिबाड़ी और इसके विषय रहेंगे महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर और जन भागीदारी, ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाएं, स्टैंड अप इंडिया, ग्रामीण पर्यटन और वर्षा जल संरक्षण। 1:45 से 2:15 पर फिल्म संगीत और विकास चर्चा आप सुनेंगे। दोपहर समाचार 2:15 पर प्रसारित किए जाएंगे, समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे। 2:30 पर कृषि जगत और 3:00 समाचार हिंदी में प्रसारित होंगे।

सांध्यकालीन सभा में आप सुनेंगे युवाणी शाम 5 बजे। हिंदी में समाचार 6:05 तक आएंगे। 6:05 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे खेती और घर। 8 बजे से 8:45 तक फिल्म संगीत। 8:45 से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 समाचारों का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9:15 पर सुगम संगीत। 9:30 पर फिल्म संगीत नई फिल्मों से। रात्रि 10 बजे

0: ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:40 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान का पाठ। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 104 104।

परशुराम पर श्रीराम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया, जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे, वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का पाठ। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 6:50 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला हगला किसान भाई बहना ने नानू भाई रो घणो घणो राम राम सा। अणी मीना में किसान भाई खरीफ फसला री वावणी री तैयारियां शुरू कर दी दी बेगा। यो समय मानसून रे पहला रो समय है, जनी टेम किसान भाई खरीफ फसला री देखो तैयारी करे है। और खरीफ फसला में जो किसान भाई जवार और बाजरा री फसल लेना चाहे, वणा किसान भाई बहन ने आपा कहना चाहवांगा कि जो किसान भाई जवारी खेती करना चाहेगा वी शुष्क जलवायु में अणी खेती ने कर सके है। कम वर्षा वाला क्षेत्र में जवारी खेती सफलतापूर्वक की दी जा सके। अंडे बाते तापमान री जट बात करा तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो उपयुक्त रहे है। अच्छी बढ़वार बात है 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा भी देखो अंडे बाते हो रहे है। जवार रे बाते हल्की दोमट, बलुई दोमट और भारी दोमट मिट्टी जो है वह उपयुक्त रहे है। साथ में जल निकासी रे अच्छी व्यवस्था वेणी जरूरी है। जवार रे वावणी जून राणी मीना में या पचे जुलाई रा प्रथम सप्ताह में किसान भाई कर सके है। बारानी क्षेत्र में अंडी वावणी वर्षा रे तुरंत बात कर देनी चावे। जवार रे बाते जटे बीज री मात्रा री अगर बात करा तो संकर प्रजातियां रे बाते 8 से 9 किलोग्राम और सामान्य प्रजातियां रे बाते 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टर उपयुक्त रेवे है। जवार रे वावणी रे बाते पंक्तियों पंक्ति री दूरी और पौध पौध री दूरी 45 से 15 सेंटीमीटर रखनी चावे। जवारे अच्छी उपज प्राप्त करवा रहे वाते 1 हेक्टर में पौधा री कुल संख्या लगभग 1.5 लाख वेणी चावे। वावणी रे पहला बीज ने कार्बेंडिज या पचे एग्रोसन जीएन या पचे कैप्टन आदि 2-5 ग्राम प्रति किलो बीज री दर शोधित करने राखनो चावे। अंडे केड़े बीज ने जैविक उर्वरक एजोस्पिरिलम और पीएसबी भी उपचारित करने 15-20% अधिक उत्पादन लीधो जाई सके। जटे ज्वारी संकर प्रजातियारी अगर आप बात करा तो CSH1, CSH9, CSH11, CSH13, CSH14, CSH17, CSH18 प्रमुख किस्म है। जवारी चारा वाली प्रजातियारी अगर आप बात करा तो उनमें CSV30F, CSV32F, CSV33MF और पूसा चरी 6 और पन्नी संकर ज्वार 5 ई प्रमुख किस्म है। जटे ज्वार में उर्वरक प्रबंधन रे अगर आप बात करा तो सिंचाई वाली दशा में जो है जवारी अच्छी उपज प्राप्त करवारे वाते 100-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फास्फोरस और 50-60 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़े है। जबकि असिंचित क्षेत्र रे अगर आप बात करा तो वन में 50-60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30-40 किलोग्राम फास्फोरस और 30-40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर पर्याप्त रहे। सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक और आयरन ज्वार रे वाते विशेष रूप महत्वपूर्ण है। अणा तत्वारी कमी ने पूरा करवा रे वाते जिंक 0.2% और आयरन 0.15

प्रतिशत गोल रो पढ़नीय छिड़काव वावणी रे 35 से 40 दिन बाद अवश्य कर देनो चावे। अगर किसान भाई जैविक खाद जिस तरह की गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद वे तो वे 10 टन प्रति हेक्टर की दर वावणी रे टेम 15-20 दिन पहला खेत में समान रूप छिड़कने मिट्टी में अच्छी तरह मिलाई दे तो वणियों कही वेगा कि जैविक खाद रे प्रयोग मिट्टी री भौतिक दशा में सुधार वेगा और भूमि री जल धारण क्षमता जो है वह भी बढ़े और ज्वार री अच्छी फसल प्राप्त भई सके। छठे किसान भाई देखो बाजरा री फसल लेना चाहे तो बाजरा री फसल वृद्धि रे वाते शुष्क और गर्म जलवायु दोई री आवश्यकता वे है। अंडी वृद्धि और विकास रे वाते 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान रे आवश्यकता वे। बाजरा री खेती आप सब जाना कि वर्का पर आधारित वे। अगर वर्का टेम पर नहीं वे, देरी वे या पचे ज्यादा अगर वर्का वे तो वह आनी फसल ने प्रभावित कर सके तो किसान भाई बहन जटे अच्छी वर्का वे वटे बाजरा री खेती ले सके। बाजरा री खेती रे वाते अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी जो है वह सब हव उपयुक्त रहे। उपलब्ध वेवा पे 20-22 टन गोबर या अच्छी सड़ी लगी खाद पहली जुताई रे समय किसान भाई जो है खेत में डाल दे और यदि वर्का हो ही जाए तो 2-3 बाद हैरो चलाई ने खेत ने तैयार करने भूमि ने समतल करने वर्का रे जल निकासी रे अगर अच्छी जगह है तो वन में ही बाजरा री खेती ले सके। बाजरा री वावणी किसान भाई अणी महीना में और अगला महीना में भी कर सके जो कि वर्षा पर निर्भर है। अगर आप देखा तो 15 जून और 15 जुलाई रे बच्चे किसान भाई जो है बाजरा री वावणी कर सके क्योंकि देखो वर्का अच्छी वेगा तो अगर टेम पे वावणी वही जाएगा तो देखो अपने बाजरा री जो फसल है वह हो सके। लेकिन अगर लगातार या भारी वर्का वे तो अणी स्थिति में जो है बाजरा री सीधी बुवाई नहीं करनी है। पौध तैयार करने मुख्य खेत जो है वन में आपा पौध ने रोपित कर सका है। बाजरा री फसल रे बाते 4-5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है। वावणी रे बाते पंक्तिया में देखो अपने वावणी करनी है जो कि देखो वावणी रे टेम 45 सेंटीमीटर पंक्तियों पंक्ति री दूरी और 10-12 सेंटीमीटर पौध पौध री दूरी अपने रखनी चाहे और 2-3 सेंटीमीटर गहराई पर देखो अपने वावणी करनी है। 2 लाख पौधा जो है वे 1 हेक्टेयर वावणी रे बाते उपयुक्त रेवे है। जटे बाजरा री संकर प्रजातियारी अगर आप बात करा तो पूसा 23, पूसा 415, पूसा 605, पूसा 322, HHB 50, HHB 67, HHB 68, HHB 117, HHB इम्प्रूव्ड बलवान 4903, 1116, 1827, 272 ये अंडी प्रमुख किस्म है। जटे अंड में देखो पोषक तत्व रे प्रबंधन री अगर आप बात करा तो रासायनिक खाद रो प्रयोग जो है मिट्टी परीक्षण रे बाद में देखो अपने करनो चावे। अनुमान रे अनुसार बाजरा री संकर प्रजाति रे वास्ते 80-90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश और संकुल प्रजाति रे वास्ते जो है 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टर वावणी रे टेम उपयोग करनो चावे। अणि सब स्थितियों में नाइट्रोजन री आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश री पूरी मात्रा लगभग 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर डालनी चावे। नाइट्रोजन री बची लगी मात्रा अंकुरण रे 4-5 सप्ताह बाद खेत में बिखेरने मिट्टी में अच्छी तरह मलई देनी चावे जो कि बाजरा रे बाते लाभदायक वे। बाजरा री फसल में थायो यूरिया जो कि एक पादप वृद्धि नियामक है अंडो 0.1% गोल 1 ग्राम थायो यूरिया प्रति लीटर पानी में गोल वणई ने वावणी रे 30-35 दिन रे बाद सिट्टा वंटे से दूसरो छिड़काव करवाऊँ उपज में 10-15% वृद्धि वे और अणु फसल में सूखा सहन करवारी क्षमता भी जो है वन में भी बढ़ोतरी वे है। अंडेज लारे कोंदो चीना मड़ुआ रागी और सावा फसलारी वावणी रे वाते भी अणि महीना में किसान भाई तैयारी शुरू कर सके। कोदोरी 10-12 किलोग्राम और अन्य श्री अन्य फसलारी 8-10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर किसान भाई उपयोग में लेने अनारे अच्छी फसल प्राप्त कर सके। तो देखो किसान भाई अणी टेम पे अगर आप अणी सब वातारो ध्यान रखोगा तो आपकी फसला जो है वह अच्छी तरह वेगा और आपने आमद भी अच्छी मिलेगा। और देखो गड़ी रियाड़ी देखा तो कार्यक्रम चालवारो अपनो टेम वेरो तो आज्ञा दोसा नानू भाई ने राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे खेती में आज। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 7 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था लता मंगेशकर की आवाज़ में दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस नाम की फ़िल्म से। इसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारी ना
3: और ये
4: मेरी गुड़िया थी ना।
5: पर दादी
1: हाँ
5: आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
9: बिजली का बिल किराना स्कूल फीस सब हो गया।
10: बन गया बजट?
9: हाँ
10: 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले।
9: ना पिछले महीने तो ली थी।
10: एक और नहीं पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
9: बढ़िया जाओ भाई।
7: आरबीआई कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था फिल्म चाइना टाउन से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, संगीत है ओपी नैयर और आवाज़ आशा भोसले की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी जो नगमा आपने सुना वो था फिल्म सीआईडी से, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ के साथ। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है 20 साल बाद फिल्म से, हेमंत कुमार के आवाज़ के साथ।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए sales@gmail.com यानी sales@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था छलिया फिल्म से, आवाज़ है मुकेश की। अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म श्री 420 से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़। संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 7:45 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत।
1: हमने दुनिया में आके क्या देखा, देखा जो कुछ सो ख्वाब सा देखा। है तो इंसान खाक का पुतला, लेक पानी का बुलबुला देखा। अब न दीजिए जफर किसी को दिल, कि जिसे देखा बेवफा देखा।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के

अभी जो गज़ल आप सुन रहे थे वो थी तलत अजीज़ की आवाज़ में। अगली गज़ल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है पंकज उदास की आवाज़ के साथ।

मीडियम व्यू 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15

0: पर मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
7: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
4: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय

0: जाती हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
3: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब

0: डेढ़ बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के डाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमांड पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज डाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक अकेला दीप भले ही थोड़ा सा उजियारा लाए, मिल जाए जब दीप अनेक, अंधियारा दूर भाग जाए। एक बूंद से क्या होता है, सागर कब बन पाता है, बूंद बूंद के मिल जाने से विशाल रूप वो पाता है। सहयोग शक्ति का स्रोत है, जीवन का सुंदर आधार, मिलजुल कर जो काम करें होता उनका सत्कार। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए आगाज करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। आज के कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे के इस बेहद रोचक अंक में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित श्रीमाली और मेरे साथ हैं
1: डिम्पी सुहालका।
0: तो स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। और इसी के साथ हम बता दें कि आज के नमस्कार कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं।
1: बिल्कुल, कम्युनिटी कनेक्ट ट्यूसडे है आज, तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले दिन की शुरुआत यानी डे ब्रेकर की बात करें तो कार पूलिंग के फायदे, उसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ आज है बलिदान दिवस, बिरसा मुंडा जी की बात होगी और फिर दैनिक खबरों के साथ में रूबरू करवाएंगे हमारे श्रोताओं को। उसी के साथ में सोशल पल्स की ओर जाएं यानी कि समाज की नब्स की ओर जाएं तो वर्क फ्रॉम होम जो एक कल्चर चल पड़ा है, वैसे ये कल्चर पहले भी था लेकिन अब तेज़ी पकड़ ली इसने, तो इस वर्क फ्रॉम होम संस्कृति के सामाजिक प्रभाव के ऊपर बात करेंगे।
0: बिल्कुल, और साथ ही बात होगी वेदर एंड हेल्थ सेगमेंट के अंदर, गर्मी में कैसे रहें हाइड्रेट के साथ साथ ही फाइबर युक्त भोजन की जरूरत और उपयोगिता पर।
1: और इसी के साथ जानकारी देंगे अवेयरनेस में विकसित भारत और सरकार के 12 वर्षों के बारे में।
0: बिल्कुल, हमारी कोशिश रहती है कि जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी भरपूर रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी उदयपुर।

0: तो हम बात कर रहे थे आज ट्यूसडे के बारे में, और हमारे श्रोताओं को सबसे पहले हम बात करते हैं बलिदान दिवस के बारे में, भगवान बिरसा मुंडा और उनका बलिदान भारतीय इतिहास में एक आदिवासी गौरव, त्याग और स्वतंत्रता संघर्ष का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। आदिवासियों के उत्थान और जल, जंगल, जमीन, इन तीनों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जननायक बिरसा मुंडा की स्मृति में हर साल 9 जून को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, और उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो उनकी पृष्ठभूमि हम देखें तो आदिवासियों को अंधविश्वास और धर्मांतरण से बचाने वाले भगवान बिरसा मुंडा धरती के लिए बहुत कुछ कर गए।
1: बिल्कुल, बिरसा मुंडा के जन्म की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 1875 को वर्तमान के झारखंड में उनका जन्म हुआ था, एक आदिवासी परिवार में। और वहाँ पर जब ब्रिटिश शासन रहा था,
0: हाँ,
1: तो जो शोषण और जो न्याय की लड़ाइयाँ थी, जो उनके ऊपर अन्याय हो रहा था, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने आवाज़ उठाने का फैसला किया। और सबसे खास बात यह है कि काफ़ी युवा अवस्था में उन्होंने आदिवासी समाज में जागृति अभियान शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी संस्कृति, परंपराओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए लोगों को सजग रहने के लिए कहा था कि अगर हम सजग नहीं रहेंगे तो कोई भी हमारे ऊपर अधिकार स्थापित कर सकता है।
0: बिल्कुल, और आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है भारत के लिए, उसमें एक प्रमुख ये थी कि जब अंग्रेज़ों ने टैक्स न देने, टैक्स जो लगाया था, तो इन्होंने टैक्स न देने का एक आंदोलन चलाया। और दिसंबर 1899 में उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ तीरों और भालों से सुसज्जित एक बड़ी क्रांति, जिसको उलगुलान का नाम दिया था, और ये इसका बिगुल फूका, और ये बहुत ही बड़ी उस समय क्रांति सिद्ध हुई थी।
1: बिल्कुल, जिसका अभी आपने जिक्र किया उल गुलान, उसे महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इनके इन्हीं कार्यों की वजह से इनके जो अनुयायी थे या इनके जो सहयोगी साथ रहने वाले लोग थे, वो इन्हें धरती आबा यानी कि धरती का पिता कहकर पुकारते थे।
0: जी।
1: और सबसे खास बात यह है कि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिटिश सरकार इनकी लोकप्रियता से डर रही थी, घबरा रही थी, और 3 फरवरी 1990 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में बंद कर दिया गया।
0: बिल्कुल, और आप जब उनका जन्म बता रहे थे, जन्मदिन का दिवस, तो मुझे उससे ये भी याद आता है कि उनकी जन्म जयंती जो कि 15 नवंबर को पड़ती है, उस दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी घोषित किया गया है। और उस दिन को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, जानते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा को हम उनके संघर्ष और बलिदान से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि यदि अपनी धरती के लिए हम कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ या फिर कुछ भी हम दान दे पाएँ, चाहे अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा भी क्यों ना हो, जिसमें हम हमारी धरती, हमारी ज़मीन के लिए एक छोटा सा कोई बलिदान दे पाएँ या त्याग दे पाएँ या उसके लिए कोई संघर्ष करें, तो वो शायद इन सभी महान विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
1: बिल्कुल, और बिरसा मुंडा जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1990 को उनका निधन हो गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उन्हें हैजा हुआ था, लेकिन आज भी इस संबंध में कई प्रश्न उठते हैं।

0: तो डिम्पी, हम बात कर रहे हैं नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के अंदर, और कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान समय में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, और ट्रैफिक के साथ ही बढ़ता हुआ ईंधन की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जो हम बार बार गाड़ियां यूज कर रहे हैं उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है और हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कोई समाधान है आपके पास?
1: बिल्कुल, आपने जो तीनों समस्याएं बताई है ना, ये आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि इस पर यदि हमने आज ध्यान नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में बहुत सारे नुकसान इसके हमें झेलने पड़ेंगे। और इसका एक बहुत अच्छा समाधान है कार पुलिंग।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि जब इसका सीधा सा एक अर्थ है कि जब हम एक ही कार में यात्रा कर रहे हैं तो कुछ लोगों को साथ में लेकर हम साथ में चले जाएं। जैसे मान लीजिए कि यदि मुझे यहाँ से, यानी कि हम मान लेते हैं आकाशवाणी से, यदि मुझे सवीना की ओर जाना है और इस रास्ते में यदि कोई और भी इसी रास्ते की ओर या इस रास्ते में कहीं बीच में कहीं किसी ड्रॉप पॉइंट पर जाना चाहता है तो वो भी मेरे साथ में आ जाए। इससे क्या होगा कि दो गाड़ियों का ईंधन भी नहीं जलेगा, दो गाड़ियों से प्रदूषण भी नहीं होगा, और हम एक साथ एक रास्ता तय कर सकते हैं, और इससे पैसे की भी बचत

0: हो सकती है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, पैसे के साथ साथ ईंधन भी बचेगा
0: बिल्कुल
1: और जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी।
0: आएगी
1: और
0: बिल्कुल।
1: सबसे खास बात यह है कि अगर आपके साथ जो यात्रा कर रहे हैं वो अगर आपके एक साथ कंट्री कर लेते हैं उस
0: हाँ
1: एक्सपेंसेस को,
0: हाँ
1: तो आपके व्यक्तिगत खर्चे भी कम हो जाएंगे। और
0: बिल्कुल
1: सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी सड़कों पे आए दिन जाम लगे रहते हैं, सिग्नल पे हम लोग काफी देर खड़े रहते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या से भी छुटकारा
0: काफ़ी
1: मिलेगा।
0: हद तक हमें राहत मिलेगी
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और लोग अपनी अलग अलग गाड़ियाँ निकालें उसके बजाय गाड़ी साझा करके जाएं, तो वैसे कई बार स्कूलों में ऐसा देखा गया है, या जो लोग आसपास रहते हैं और एक ही दफ्तर जाते हैं तो वो लोग कई बार इस तरीके का करते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थीगण बहुत सारा हमारा जो आना जाने का एक ये माध्यम होता है, इसको हम एक ही माध्यम से वो जाना पसंद करते हैं। पर इसके हम फायदों की बात करें तो देखिए, आर्थिक बचत की तो हमने बात कर ही ली,
1: जी
0: क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो मेरा 100 रुपया अगर लग रहा है और मेरे साथ में कोई बिल्कुल साथ ही पूरे उसी गंतव्य को तय कर रहा है, तो मेरा वो 100 रुपया 50 रुपये में बन जाएगा और अगला व्यक्ति मुझे 50 रुपये मुझसे साझा कर सकता है। उसी के साथ पर्यावरण की बात आपने कर ही दी
1: जी
0: और ट्रैफिक की बात भी आपने करी। इसके साथ एक और चीज़ हो जाती है कि देखिए, जब हम किसी के साथ में चलने लगते हैं ना, तो आपस में बातें भी होती हैं, थोड़ी बहुत हमारी उस पूरे रास्ते में जो एक हमारा सफ़र जो होता है वो तय हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: साथ ही साथ गाड़ी की लॉन्गेटिविटी बढ़ती है, यानी कि गाड़ी की उम्र बढ़ती है। जब हम रोज़ गाड़ी घसीटते हैं तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं घसीटते घसीटते अपना उसका जो इस्तेमाल होता है उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा जाता है, और
1: बिल्कुल
0: उस मेंटेनेंस को हम कम कर सकते हैं। यानी कि गाड़ी अगर एक दिन छोड़कर एक दिन जाए, आप अपने कलीग के साथ में इस तरीके से कुछ साझ कर ले, तो फिर इसमें भी फायदा होता है
1: जी
0: और आपस में जान पहचान तो बनती ही है।
1: बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि अभी हम जो डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो कार पुलिंग के लिए ऐसे कुछ ऐप्स भी हैं। अगर आप
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा तफरी मारें और ढूंढें, तो ऐसे
0: हाँ
1: ऐप्स आपके शहर में कौन से ऐप एक्टिव हैं
0: हाँ
1: उनको आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं, और वहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि मुझे राइड चाहिए या मैं राइडर हूँ, मैं फ्री जा रहा हूँ, तो
0: बिल्कुल
1: दोनों ही सूचनाएँ आपको मिल सकती
0: मिल
1: हैं।
0: जाती हैं।
1: लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है कि कार पुलिंग का जब आप इस तरह से कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी
0: बिल्कुल,
1: है।
0: हम ऑब्वियसली किसी एक अनजान व्यक्ति के साथ में जा रहे हैं तो हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम
1: जी
0: अपनी, जैसे अगर कोई फीमेल है तो वो अपनी लाइव लोकेशन अपने घर वालों को सेंड कर सकती है ताकि पता रहे कि वो कहाँ जा रही है, किस रास्ते पर जा रही है। और आप कुछ बताएंगे इस बारे में?
1: बिल्कुल। और साथ में अगर आप ऐप के माध्यम से लॉग इन कर रहे हैं, तो जो भी राइडर है या जो भी पैसेंजर है, वो दोनों ही लोग अपनी रेटिंग्स जरूर देखें, क्योंकि आजकल
0: बिल्कुल
1: ऐप पे ये फैसिलिटी है कि कौन कितना कैसा है, तो वो रेटिंग से आपको एक आइडिया लग जाता है कि इसके साथ सेफ है मैं यात्रा करना या नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो इस चीज़ की आप बिल्कुल ध्यान रखें। और जब भी आप कार पुलिंग के लिए जाएं और अपना पैसेंजर अगर आप रिसीव कर रहे हैं, तो कोशिश करें वो एक पब्लिक प्लेस हो, मतलब वो एक कोई ऐसा शांत जगह ना हो कि बाद में एलिगेशंस या ब्लेम्स वाला गेम शुरू हो जाए। तो
0: जी
1: इससे बचने के लिए पब्लिक प्लेस से ही आप पिकअप करें और पब्लिक प्लेस पर ही ड्रॉप करें।
0: बिल्कुल
1: एक और खास बात अभी देखने को मिलती है, वो है कि कार के अंदर आप कोशिश करें कि डैश कैम जरूर लगवा लें
0: जी जी
1: कार
0: जी
1: पुलिंग पे अगर आप
0: जी
1: जाते हैं,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ताकि आपने किस पैसेंजर को कहाँ से रिसीव किया है उसका डेटा भी रिकॉर्ड होगा। और
0: बिल्कुल
1: डैश कैम की अभी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो
0: हाँ
1: कार के अंदर भी रिकॉर्ड करता है, बाहर भी रिकॉर्ड करता है, तो आप
0: बिल्कुल
1: अपने बजट के अकॉर्डिंग
0: अपने
1: उसको।
0: हिसाब से हम कर सकते हैं उसको।
1: जी तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि कार पुलिंग का उपयोग कर सकते हैं। और ये छोटी सी जो बदलाव है, ये जेब के लिए अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, और समाज के लिए तो बट ऑफ कोर्स अच्छे हैं।
0: बिल्कुल। और अब जरा हम कुछ स्थानीय खबरों की बात करेंगे क्या?
1: बिल्कुल
0: तो हमारे श्रोताओं से साझा करते हैं कि अब जो आगामी मॉनसून का सत्र आने वाला है, फिलहाल तो मॉनसून की क्या बात करें, गर्मी का जो जोरों शोरों का ये जो आलम है, इस गर्मी में अभी भी राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। विशेष रूप से अभी 11 जून तक, कहते हैं विशेषज्ञ कि 11 जून के बाद में थोड़ा मौसम बदलने वाला है और फिर उसके बाद में आंधी बारिश और ये सब चीज़ों का दौर रहेगा। और आगामी मौसम की जो चिंता है, इसके चलते उदयपुर में सभी नदी नालों की सफाइयां होना शुरू हो चुकी हैं, और इसी के चलते अगली खबर कुछ आप बताएं।
1: बिल्कुल उदयपुर में बिजली बंद की सूचना है सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक। और जो एरिया इसमें आ रहे हैं वो है कि खेड़ा देवी, मेटल रॉक्स फैक्ट्री क्षेत्र, फांदा गांव, आशियाना धारा हीरा गवाड़ी के आसपास और इससे आसपास के जो संबंधित क्षेत्र हैं वहाँ पर बिजली

0: बंद का सरकार ने बताया है, तो
1: बिल्कुल
0: उससे पहले यानी 9 बजे से पहले आप अपने सारे काम कर लें, आपको फोन चार्ज करना है या आपकी जो ईवी
1: हाँ
0: गाड़ियां हैं उन्हें चार्ज करके
1: हाँ
0: रखें
1: अभी आजकल इन दिनों में सबसे ज़्यादा ये चार्जिंग की समस्या ज़्यादा हो चुकी है बिजली के चलते।
0: जी
1: अच्छा, और आपको बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई है कल यानी सोमवार को, जिसमें जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अध्यक्षता की और उन्होंने एक पूरी कमेटी बिठाई है जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा भी ली है और दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो भी जल भराव से प्रभावित क्षेत्र होते हैं उनमें सुधारात्मक कार्य अभी से ही हो जाएं, ताकि जब बारिश होगी तो फिर उन क्षेत्रों में पानी भराव की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं देखनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल। और 2 ट्रेनें आज प्रभावित रहेंगी। पहली ट्रेन जो है वो है उदयपुर से जलपाईगुड़ी जो जा रही है, न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर ट्रेन। ये ट्रेन 8 जून को यानी कि आज माफ़ कीजिएगा 2.5 घंटे ये कल देरी से प्रस्थान करी थी, क्योंकि ट्रैक पर कुछ काम चल रहा है। और यही ट्रेन 15 जून को जलपाईगुड़ी से प्रस्थान करेगी और वहाँ से जब ये आएगी तो इसका मार्ग चेंज है, रूट इसका थोड़ा चेंज किया गया है। लखनऊ कानपुर सेंट्रल गाज़ियाबाद होकर ये आएगी, तो जिसका भी रास्ता थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो एक बार देख कर ही यात्रा करें।
1: बिल्कुल।

0: तो बात करते हैं अब अगले विषय के बारे में, और अगला विषय कुछ रोचक सा है क्योंकि समाज की नब्ज बन चुका है ये विषय, और ये विषय है वर्क फ्रॉम होम संस्कृति और इसका सामाजिक प्रभाव। अब वर्क फ्रॉम होम जो संस्कृति यानी कि एक ये जो कल्चर बन चला, ये क्या है, ये पहले भी यानी कोविड से पहले भी वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी कंपनीज आपको देती थी, यानी
1: जी
0: कि आप घर बैठे ऑफिस का काम यानी दफ्तर का काम आप कर सकते हो, ऑफिस उसके लिए आने की आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल
0: और लेकिन क्या होता था कि तब ये इतना
1: पॉपुलर नहीं था।
0: बिल्कुल इतना प्रचलित नहीं था, और फिर इसके चलते जब कोविड आया तो कोविड में तो फिर सभी लोग घर में ही बैठे रह गए, तो फिर ये जो कल्चर है ये सामने आने लगा, और फिर अब तो सभी को पता है कि वर्क फ्रॉम होम होता क्या है, और इस संस्कृति के बहुत सारे देखे फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं।
1: बिल्कुल, तो पहले फायदों की बात करते हैं। तो
0: बिल्कुल
1: सबसे पहला फायदा यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: और आपको एक मतलब जब फैमिली वालों को आपकी ज़रूरत है या आपको फैमिली की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा लैपटॉप को डाउन करके 2 मिनट उधर बात कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: और नेटवर्क नहीं आ रहा है का एक बहुत अच्छा बहाना है हमारे पास
0: जी
1: तो उसके साथ में थोड़ा सा आप अपना कुछ पर्सनल चीज़ें भी देख सकते हैं।
0: साथ में देखिए, अगर घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं,
1: जी
0: तो अगर उन्हें मेडिकल देखभाल की आवश्यकता है, तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम बहुत ही कारगर सिद्ध होता है कि आपकी उनकी गतिविधियों पर नज़र रह जाती है, और आप उन्हें कोई भी चिकित्सा सहायता या भावनात्मक सहायता भी तुरंत दे पाते हैं। लेकिन देखिए, जब मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पारिवारिक जीवन संबंधों की बात कर रहे हैं
1: जी
0: और हम इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो जहां पर हम फायदों की बात करें तो यहां पर एक नुकसान भी होता है कि कई
1: बिल्कुल
0: बार व्यक्ति जब दफ्तर चला जाता है तो वो अपने घर की टेंशनों को वहीं पीछे छोड़कर दफ्तर जाता है,
1: हाँ
0: वहां काम करता है, लेकिन कई बार जब वो घर में ही रहता है वहीं काम कर रहा है, तो फिर उसके दुष्प्रभाव ये भी देखने को मिलते हैं कि फिर वो जो घर में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि क्लेश
1: हाँ
0: कभी ज्यादा भी हो जाता है, और उसके चलते फिर वो एक लाइफ का जो बैलेंस बन पाता है वो नहीं बन पाता है, और वो एक फ्री माइंड से काम नहीं कर सकता, उसका ध्यान कई बार घर की
1: घर की तरफ
0: परिस्थितियों
1: से।
0: में रहता है।
1: और इसके साथ में एक नुकसान और है, वो
0: हाँ
1: ये
0: हाँ
1: है कि जो पहले एक टाइम था कि भैया मैं 10 से 6 ऑफिस हूँ,
0: बिल्कुल
1: अब वो टाइम खत्म हो गया। बॉस कभी भी फोन करके भैया ये रिपोर्ट भेजो, जल्दी भेजो,
0: जी
1: आप कहाँ हो, कैसे हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपके पास कंपनी का एक लैपटॉप दे रखा है
0: हाँ
1: उन्होंने।
0: हाँ
1: तो इन चीज़ों को मतलब एक समय सीमा निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है अगर आप वर्क
0: कार्य की
1: फ्रॉम होम।
0: समय सीमा तो रहने गई इसमें, और
1: जी
0: साथ ही ये है कि एक व्यक्ति तैयार होकर जब एक माइंड बनाकर चला जाता है ना दफ्तर, तो उसकी जो व्यक्तित्व है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। साथ ही साथ देखिए कि अगर फायदों की बात करें तो जल्दी से इस इनके फायदों की बात करते हैं कि महानगरों में अब दबाव कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादातर बड़ी कंपनियां महानगरों में हैं, तो वहां पर कल्चर जो है वो काम करने का है कॉरपोरेट का, और उससे प्रभाव कम होकर छोटे शहरों का विकास हो रहा है, क्योंकि जो प्रतिभाएं हैं वो अपने शहरों में ही रहकर महानगरों की कंपनियों में जॉब कर रही हैं। इसी के साथ में कार्यस्थल की जो संस्कृति है इस पर एक प्रभाव हमें देखने की ज़रूरत है कि ऑफिस में कई बार कॉफ़ी ब्रेक या फिर पानी पीने के ब्रेक के चलते हम बहुत सारे हमारे कर्मचारियों के साथ में बात करते हैं, सहकर्मियों के साथ बात करते हैं, और सहकर्मियों के साथ हमारा जो एक रिश्ता होता है वो अब कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है, क्योंकि हम
1: जी
0: वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ में अगर बात करें तो मुझे ये लगता है कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, जिसमें
0: बिल्कुल
1: कुछ दिन आप घर पे काम कर लो, कुछ दिन ऑफिस आ जाओ।
0: हाँ
1: कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑफिस जाओ और चौकीदार बोले भैया किधर कहाँ जा रहे हो,
0: वो बिल्कुल जान
1: आपको तो,
0: पहचान रह
1: हाँ
0: नहीं
1: आपको
0: जाती
1: तो
0: है।
1: देखा ही नहीं इस ऑफिस
0: जी
1: में,
0: जी
1: है ना।
0: जी
1: तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफिस आते जाते रहें, साथ
0: हाँ
1: में घर पे भी आप बैठ के काम कर सकते हैं। और इसी के साथ घड़ी की तरफ अगर नज़र डालें तो अब वक्त हो रहा है हमारे प्रादेशिक समाचारों का, जो कि
0: बिल्कुल
1: जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जाएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। ये बैठक 13 जून तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले कल श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि ये विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 12 जिले के कुंजेड़ निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी भी शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश को असाधारण वीरता, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण में 5,410 लोगों ने नशामुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्ती से नशा मुक्त क्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा नशीली गतिविधियों की गुप्त सूचना देने के लिए शिकायत पेटियां भी लगाई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए

जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जल्दी ही एकीकृत ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कामकाज में कम खर्चा आएगा। साथ ही मानव संसाधन, वित्त, लेखा और परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की बिलिंग और शिकायतों का निवारण भी आसान हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,95,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है। बिजली मित्र ऐप के जरिए लोग घर बैठे कनेक्शन और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस पर शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, जेलों, प्रमुख पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखा गया है। इस बीच प्रदेश भर में योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। कल हनुमानगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में बताया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी विभागों को इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीक का बढ़ता उपयोग जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में वित्त भवन स्थित कोष और लेखा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने साइबर ट्रेजरी और ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को SNA स्पर्श पोर्टल पर जल्द जोड़ने और जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में भी पारा 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति बन सकती है, साथ ही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का दौर कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान JDA के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। JDA के इस बड़े अभियान के दौरान सड़क सीमा में आ रहे 125 से अधिक अवैध निर्माणों और 5 धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है।
प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में

0: पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मेरे साथ हैं
2: डिम्पी।
1: तो आइए सुनते हैं ये नगमा।

0: तो डिम्पी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक पे, यानी कि विकसित भारत का संकल्प और सरकार के 12 वर्ष।
1: बिल्कुल। और देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव को ये दर्शा रहा है, यानी कि वर्ष 2014 से लेकर अभी तक का, यानी वर्ष 2026 तक, जिसमें जो वर्तमान सरकार है इसके 12 वर्ष हो चुके हैं। और हम इस सरकार के जो एक नारे के तहत, या एक हम कह लीजिए संकल्प के तहत देख रहे हैं, वो है विकसित भारत, यानी वर्ष 2047 तक भारत को एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है,
0: जी
1: इससे प्राप्त करने के लिए इन 12 वर्षों में जो एक आधारशिला रखी गई है, इस आधारशिला के बारे में आइए बात करते हैं। तो हम जब आर्थिक दृष्टि से देखते हैं, हमारे राष्ट्र के आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं, तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हमने लिया था, और भारत पिछले एक दशक से दुनिया में फ्रेजाइल 5, यानी कमज़ोर 5 की अर्थव्यवस्थाओं में एक शामिल था और उससे जूझ रहा था। लेकिन आगामी वर्षों में हम लोग आगे आने वाली बड़ी चुनौतियों से लड़ते हुए, और वर्तमान में ही हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और अगले कुछ आने वाले दिनों में या आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया और इसे पूरा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कुछ
0: जी
1: बताएंगे?
0: बिल्कुल। और अगर 12 वर्षों की मुख्य उपलब्धियों के बारे में बात करें

0: करें तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है गरीबी से मुक्ति, यानी कि पिछले 12 वर्षों में लगभग 25 करोड़ से ज़्यादा बहुआयामी लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पक्के मकान यानी कि पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान मिले हैं। मुफ्त राशन और स्वास्थ्य की बात करें तो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। हर घर जल यानी कि जल जीवन
1: जीवन
0: मिशन,
1: मिशन
0: हाँ जी,

0: की ही है। तो देखिए, वित्तीय समावेश और स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत 50 करोड़ से अधिक शून्य बैलेंस के खाते खोले गए, उसी के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं तो अब तक 57 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं, जो कि युवाओं और छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी का लोन है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ हम बात करें पीएम स्वनिधि योजना के बारे में, तो रेड़ी पटरी यानी कि जो हमारे सड़क पर काम करने वाले जो व्यापारी हैं, उनके लिए अपना काम शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन इसमें दिया जाता है। फिर हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं, तो लोहार, सोनार, कुम्हार, कारपेंटर जैसे बहुत सारे जो पारंपरिक कारीगर हैं, उन्हें ट्रेनिंग, आधुनिक टूल किट और कम ब्याज पर लोन की सुविधा उपलब्ध है।
1: बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें तो विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी हमारे देश में शुरू हुई है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस है, नमो भारत है, और उसके बाद में जो हाईवे, कहीं जहाँ जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ पर भी अब हाईवे पहुँच गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत अब रक्षा उपकरणों में केवल आयातक, मतलब आयात ही नहीं करता है, बल्कि
0: अब हम मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं,
1: हम मैन्युफैक्चर करके निर्यात भी कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, हम उन उत्पादन को स्वयं से बना रहे हैं और हम पूरे विश्व को वो उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। और जहाँ आपने राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की ना, वहीं पर रेलवे का आधुनिकीकरण की भी आपने बात करी, तो मुझे एक चीज याद आती है कि विमानन क्षेत्र में उड़ान योजना जो है, इसके जरिए 2 टीयर और 3 टीयर वाले जो शहर हैं उन्हें जोड़ा गया है। और एक बात और इसमें मैं बताऊं कि देखिए, जन धन, आधार और मोबाइल, इन तीनों की जो ट्रिनिटी बनती है यानी कि इसका आंकड़ा बनता है, तो जैम ट्रिनिटी इसको कहा जा रहा है। 50 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते खोलकर देश के सबसे गरीब व्यक्ति को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। और साथ ही जब हमने बहुत सारी योजनाओं की बात की है ना, तो मुझे महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं ध्यान आती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें 10 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी गैस के कनेक्शन दिए गए, लखपति दीदी योजना की बात करें या प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की बात करें, तो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण के लिए 5,000 की प्रत्यक्ष नगद राशि दी गई। और इसी के साथ में किसान कल्याण की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में हर साल 6,000 की सीधी नकद सहायता जा रही है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ही, साथ में पीएम प्रणाम योजना भी इसके अंतर्गत जा रही है, जिसमें जो भी हमारे रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके उपयोग को कम करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएँ हैं।
1: बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो हमारे आमजन जीवन को प्रभावित कर रही हैं, उनसे फायदे लेकर बहुत सारे लोगों का जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक गाना सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को।

0: गर्मियों में हम देखिए गर्मी की बात कर रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि बहुत गर्मी पड़ रही है और पसीने से तो हाल खराब हो जाते हैं दोपहर तक। और जो गर्मी लगती है ना, तो कूलर एसी भी कई बार थोड़ी देर के लिए तो कारगर सिद्ध नहीं होता, थोड़ी देर बाद ही शरीर को राहत मिलती है। तो शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए सही खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तेज़ धूप और पसीने के कारण शरीर में जो कमी आ जाती है वो होती है पानी की कमी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: पसीना निकलता है तो उससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें शरीर को हाइड्रेट रखना
1: जी।
0: है।
1: और हाइड्रेट रखने के क्या तरीके हैं? तो बहुत बेसिक तरीके हैं, समय समय पर पानी पीते रहें। पानी पीने के साथ ही अगर ऐसा लग रहा है कि पानी हम ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं तो लिक्विड चीज़ें ज़रूर लें,
0: बिल्कुल।
1: जिसमें कुछ जूस हो सकते हैं या फिर नारियल पानी हो सकता है, तो छाछ मट्ठा ये चीज़ें हो सकती है, सत्तू आप पी सकते
0: सत्तू हो
1: हैं
0: सकता है, कैरी का पानी, आम पना हम जिसको
1: जी।
0: कहते हैं, ये हो सकता है। विभिन्न प्रकार के पन्ने भी बनते हैं, वो सब हो सकते हैं। कांजी बनती है, उसका
1: जी
0: भी फायदा होता है। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे करके जो हमारे कुल मिलाकर पूरे दिन भर की दिनचर्या में खाने पीने से लेकर हम बात करें, तो पानी की मात्रा जिनमें अधिक हो, ऐसे ही हम भोजन भी करें और ऐसे ही पदार्थों का सेवन भी करें। और साथ ही जैसे हम बात करते हैं कि हमारे खाने में किस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए, तो
1: जी,
0: हम दोनों चीज़ों को देखें कि जिसमें पानी की मात्रा भी हो और फाइबर भी हो, तो
1: फाइबर भी हो
0: हमारी शरीर को उसका फायदा मिल सकता है। तो जैसे मान लीजिए तरबूज है, खरबूजा है, जो जिनमें 90% लगभग पानी ही होता है, और इनमें खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब चीज़ें फाइबर युक्त भी होती हैं और इनमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है।
1: बिल्कुल। और अभी आपने फाइबर की बात करी, तो फाइबर हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्यों जरूरी है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके और महीन और बारीक होता जाएगा,
0: बिल्कुल।
1: और फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेट में भी नहीं पचता है, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने डाइजेशन के लिए या हमने जो खाया है उसे बाहर निकालने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ अगर पेट में रहेगी तो चिपक जाएगी, वो नहीं निकल पाएगी, तो उस चीज़ों से बचने के लिए फाइबर युक्त भोजन करना बहुत ज़रूरी है। और जो आंकड़े दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा या डॉक्टरों के द्वारा, तो प्रतिदिन हमें कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर का
0: फाइबर
1: सेवन
0: लेना
1: करना
0: ही
1: ही
0: चाहिए,
1: चाहिए।
0: बिल्कुल। और गर्मी में देखिए विशेष रूप से पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे कई बार कब्ज की समस्या भी हो सकती है। तो ऐसे में जब हम फाइबर युक्त भोजन लेंगे तो वो हमारे, जैसा कि आपने बताया, कि हमारी इस समस्या का समाधान करेगा। साथ ही अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो हरी पत्तेदार सब्जियां इसमें हो गई, और वर्तमान समय में जो सब्जियां आ रही हैं, लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू, इन सभी सब्जियों में फाइबर होता है और ये आसानी से पचती भी है, साथ ही साथ पानी की मात्रा भी होती है। हम अनाज की बात करते हैं तो दलिया, ओट्स या जौ हो गया, जिसका सेवन हम कर सकते हैं। जौ का सत्तू भी गर्मी में अमृत के समान कार्य करता है।
1: बिल्कुल। और साथ ही बात करें कि आप जो फाइबर युक्त चीज़ों की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने लिक्विड चीज़ों की बात करी, तो जूस एक बेहतर विकल्प है लिक्विड
0: बिल्कुल
1: चीज़ों का। लेकिन
0: बिल्कुल।
1: अगर आपको फाइबर चाहिए तो जूस से ज़्यादा यह है कि चबा चबा के

0: लोगों को खाइए,
1: बिल्कुल,
0: तो आपको फाइबर भी मिलेगा और लिक्विड आपकी जो कमी है वो भी पूरी हो
1: जाएगी। जो पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है उसकी भरपाई हो सकती है। सलाद अगर हम लेते हैं तो उसमें सलाद में भी भरपूर मात्रा में हमारे इसमें पानी मिलता है, तो उसकी कमी भी हो सकती है पूरी। और साथ ही साथ आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे बीज और नट्स का प्रयोग हम करते हैं खाने में, नाश्ते में, तो उनको भी यदि हम पानी या दूध में मिला देते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में पानी की कमी की पूर्ति हो जाती है। और देखिए, इन सभी से हम, मतलब जैसे जो गर्मियों में कैसा सेवन करना चाहिए, तो हम ज़्यादातर प्रयास करें कि तेल मसालेदार खाना हम अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर हमें कई बार ये भी होता है ना कि पेय पदार्थ लेना है, यानी कि हम हाइड्रेट रखने की बात कर रहे हैं, तो उसमें चाय और कॉफ़ी भी पेय पदार्थ है, लेकिन वो कई बार गर्मी में नुकसान कर सकता है। उसकी गर्म होने की जो एक तासीर है, साथ ही साथ उसमें कैफीन होता है कई बार शरीर में, फिर उल्टा कमी हो जाती है क्योंकि वो बार बार यूरिन करने के लिए हमें फोर्स करता है और उसके चलते पानी की कमी हो सकती है। जंक फूड को भी हमें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। उन सब चीज़ों से प्रयास करना चाहिए कि पूरे दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी हम जरूर पिए।
0: बिल्कुल। और एक मैं फन फैक्ट बता देता हूँ,
1: 100 ग्राम
0: अमरूद अगर हम खाएंगे दिन भर में तो हमें लगभग 5 ग्राम फाइबर मिलेगा।
1: बिल्कुल।
0: वहीं पर 100 ग्राम चिया सीड्स अगर हम किसी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो हमें 34 से 35 ग्राम फाइबर मिल सकता है। तो हमें अल्टरनेटिव भी देखना है जिसमें ज्यादा फाइबर हो, हम उसका उपयोग करें,
1: उसका सेवन करें।

0: और इसी के साथ घड़ी की तरफ देखें तो कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त हो गया है।
1: बिल्कुल
0: आज के इस अंक में मैं था आपका रेडियो दोस्त अमित, और मेरे साथ थी
1: डिम्पी।
0: दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 9:30 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
3: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
4: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
3: जी।
4: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
3: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
4: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
3: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
4: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
3: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
4: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
3: जी।
4: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
3: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अलवर टेक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
4: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
3: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
4: जी।
3: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
4: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
3: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
4: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
3: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
4: जैसे?
3: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
4: जी सचमुच, चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
3: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
4: तो क्या क्या नियम है इसके?
3: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वा यानी हारमोनी या सामंजस्य।
4: और दूसरा शब्द क्या है?
3: दूसरा शब्द है केई
4: जी,
3: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
4: और श्रोताओं, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
3: श्रोताओं, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो अजीत जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
4: जी हाँ, तो श्रोताओं, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
3: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा
4: जी। और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
3: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय

0: कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है।
1: हुँ.
0: फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है। बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ, पाए लागू बड़ी बहुरिया।
2: आ गए भैया।
3: हाँ।
2: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने।

0: はいはい。
1: हर गोविंद भाई,
2: हाँ,
1: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
2: कहाँ बड़ी बहुरिया?
1: मेरी माँ के पास।
2: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
1: माँ से कहना मैं भाभी भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
2: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए,
0: अरे
1: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है। हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?

0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
1: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
2: पाए लागू माँ जी।
3: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
2: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
3: मेरी बेटी का कोई संवाद?
2: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं।
3: हाँ?
2: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
3: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
2: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
3: सो तो है।
2: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
3: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
3: हाँ सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
3: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
3: अरे
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
3: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
2: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
2: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
2: राम राम।

0: बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है, जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, हाँ पी लो पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजंस कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of

गीत से सजा हुआ फिल्म का नाम है लव आजकल और आवाज़ है राहत फ़तेह अली खान साहब की। अगला नगमा जो हम लेकर आए हैं वो है फिल्म इश्किया से विशाल भारद्वाज का संगीत और राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया फीडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
1: चले ले आ गया नया फीडबैक।
3: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
8: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
9: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
8: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
9: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
6: आप कौन?
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अभी जो नगमा आपने सुना वो था सोहम की आवाज़ में और प्रीतम के संगीत के साथ। फिल्म का नाम है लाइफ इन मेट्रो। अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म महाराज से। मोनाली ठाकुर की आवाज़ और सोहेल सेन का संगीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अरमान मलिक के संगीत और उन्हीं की आवाज़ के साथ अभी जो नगमा आपने सुना वो था फिल्म MS धोनी से। और अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म Super 30 से। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ और संगीत किया है इस फिल्म का अजय अतुल ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में फ़िल्म पैडमैन का ये गाना अभी आपने सुना, और अगला नगमा जो है वो है फ़िल्म विकी डॉनर से। आवाज़ है सुकन्या की और संगीत किया है इसका अभिषेक अक्षय ने।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें,
2: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

अभी जो नगमा आपने सुना उसे कंपोज़ किया था संजय लीला भंसाली ने, और अपनी आवाज़ दी थी शिवम पाठा, कुणाल पंडित, अजीज़ नाजा और फरहान सबरी ने। फिल्म का नाम था पद्मावत। अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म मसान से। इंडियन ओशियन बैंड की कंपोजिशन, और इसे गाया है स्वानंद किरकिरे ने।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और अब आपको लिए चलते हैं फिल्म संगीत के आखिरी नगमे की तरफ, और ये जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे गाया है राहत फतेह अली खान साहब ने, और सलीम सुलेमान का संगीत है। फिल्म का नाम है आजा नच ले। और इसी नगमे के साथ आपके रेडियो दोस्त अमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारे ना
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
0: और ये
2: मेरी गुड़िया की
3: ना। दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
5: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
8: बन गया बजट?
7: हाँ 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना। आरजी अमित के साथ हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 11 बज चुके हैं और अब आपको सुनवाते हैं राग जौनपुरी में।

उस्ताद बिस्मिल्ला खां की आवाज़ में राग जौनपुरी में शास्त्रीय संगीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत में चंद गज़लें। पहली गज़ल पंकज उदास की आवाज़ में।

0: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना गिट बैग।
1: RBI कहता है
2: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: सुगम संगीत में पंकज उदास की गाई गज़ल अभी आपने सुनी। एक और गज़ल हम आपको सुनवाएंगे मेहंदी हसन की आवाज़ में, उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: नए झुमके
1: ना, पहले बचत,
0: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
0: लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

सुगम संगीत में चंद गजलें अभी आपने सुनी अनुराधा पौडवाल की आवाज में गजल थी। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। फिल्म संगीत में आप आरजे एकता के साथ हैं और आपको हम बेहतरीन नगमे सुनवाएंगे। लहमबर हुसैनपुरी की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। बड़ा ही प्यारा गीत है ये तनु वेट्स मनु फिल्म का। आइए सुनते हैं।

फिल्म संगीत के दौरान आप बेहतरीन नगमे सुन रहे हैं। अगला गीत तुम मिले फिल्म से, जावेद अली साहब की आवाज़ इसमें है।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी, अब नहीं झुमके ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि हाँ? लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: जावेद अली साहब की आवाज में बड़ा ही प्यारा गीत तुम मिले फिल्म से अभी आपने सुना। प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं विकी डॉनर की आवाज में, विकी डॉनर फिल्म से आयुष्मान खुराना की आवाज में एक और बेहतरीन नगमा।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, केके और शिल्पा राव की आवाजों में, बचना ए हसीनो फिल्म से।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक से एक बेहतरीन गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनवाते हैं। बड़ा ही प्यारा गीत है द ट्रेन फिल्म का, के और सज्जी राव की आवाज़ों में।

0: फिल्म संगीत में 101 बेहतरीन नगमे आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं 30 मार्खा फिल्म से ये गीत, सोनू निगम की आवाज इसमें है।
1: Once upon a time in La La La, सुनो सुनो हम 30 मार्खा।

बड़ा ही प्यारा गीत अभी आपने सुना, एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं शफाकत अमानत अली साहब की आवाज़ में फिल्म यारियां से। अरको का इसमें संगीत है, आइए सुनते हैं एक और गीत।

0: यारिया फिल्म से शफ़क़त अमानत अली साहब की आवाज़ में बेहतरीन गीत अभी आपने सुना। ये सुनते एक संदेश और उसके बाद वेकअप सेट फिल्म से कविता से टमिता भट्टाचार्य की आवाज़ में एक और नगमा सुनवाएगी।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विज़ीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

वेकअप सिड्स फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं कि जवानी है दीवानी फिल्म से टोची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाज़ों में।

ये जवानी है दीवानी फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जरा हटके जरा बचके फिल्म से, अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाजों में।

तो है तो फिर मुझे और क्या चाहिए, बड़ा ही प्यारा गीत, जरा हटके जरा बचके फिल्म से आपको अभी सुनवाया था। यंगिस्तान फिल्म से एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, इसमें आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। इस फिल्म का ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। युवराज फिल्म से ए आर रहमान साहब का इसमें संगीत है, अलका याग्निक की आवाज़ इसमें है।

इसी प्यारे से गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये सफर यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को है, जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, वहां से सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की आज से इंदौर में शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज के सत्रों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर चर्चा से टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद मिलेगी। ये विषय छोटे किसानों के सशक्तिकरण और वैश्विक कृषि व्यापार को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपये का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। साथ ही स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर प्रांगण में

0: धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। श्री शर्मा कल डीग पहुंचे थे, उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। दिन के समय सूरज की तपिश और गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पारा 40 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। कल 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं फलौदी में 44.8, जैसलमेर और बीकानेर में 44, चूरू में 43.5 और बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सहेलिया री बाड़ी।

0: राम राम नीता भाई सा, राम राम
1: राम राम भावना भाई सा, राम राम
0: और सहलियारी बाड़ी कार्यक्रम होनावली हंगली बेना ने भी आपनो
1: राम राम सा।
0: देखो कार्यक्रम रो टाइम भी हो और नीता भाई सा आपी भांत भांति जानकारी आपने सहलियारी बाड़ी दे कार्यक्रम में लेन आया हाँ। और देखो सब बेना जाने हैं कि भांत भांति जानकारी तो करावांगा ही और लारे लारे मनारे वास्ते मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी तो सुनावांगा नी सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो भावना भाई सा, आज सब पहला बेना ने बतावा भाई महिला आत्मनिर्भरता और जन भागीदारी कई है सा।
0: देखो सर जेटे महिला आत्मनिर्भरता और जन भागीदारी की बात करें हाँ तो कणी भी राष्ट्र रे सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास रो महत्वपूर्ण आधारशिला यही से जन टेम अपनी बेना शिक्षित वेगा सशक्त वेगा और आत्मनिर्भर वेगा वन टेम भी न केवल अपने परिवार हो बल्कि आप ही कह सका कि पूरे समाज और देश रे जो विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा सा।
1: और देखो आज राणी आधुनिक युग की बात करा तो देखो बेनारी भूमिका जो है घर री चार दीवारी तक सीमित नहीं है। भावना भाई सा देखो भी शिक्षा विज्ञान राजनीति व्यापार खेल और दूजा कई क्षेत्र है जटे अपनी प्रतिभा रो प्रदर्शन भी कर रही है सा।
0: सही बात है। और नीता भाई सा जटे आप ये बार बात की थी महिला आत्मनिर्भरता री तो देखो सा मनो मतलब यो व्यो की बेना जो है अपने जीवन नु जुड़िया लगा निर्णय स्वयं लेवा में सक्षम वे और आर्थिक रूप भी स्वतंत्र वे। आत्मनिर्भर बेना जो है अपने अधिकार रे कर्तव्य रे प्रति जागरूक वेगा और पचे आप ही कह सका कि समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीवे सा।
1: और देखो शिक्षा जो है वह बेना ने आत्मनिर्भर बनावे और आत्मनिर्भर बनावारी पहली कुंजी भी विने कह सका।
0: हाँ हाँ।
1: शिक्षित महिला अपने देखो परिवार रे स्वास्थ्य टाबरारी जा शिक्षा है आर्थिक स्थिति है विने बेहतर बनावे में खास भूमिका निभावे। और देखो सरकार भी कई जो है कार्यक्रम चले में लिया है जिसरे की देखो गावा में अपनी बेना रे वास्ते स्वयं सहायता समूह कौशल विकास योजना बेना रे वास्ते

0: महिला उद्यमिता कार्यक्रम, महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा में ई सब जो है सहायता कर रहा है सा।
1: सही बात है। देखो सा नीता भाई सा जटे आप जन भागीदारी री बात की थी, तो देखो सा वनो मतलब यो व्यो कि समाज के सभी वर्ग रे विकास कार्य में सक्रिय सहभागिता अपनी बहना निभाई रही है। जन टाइम बहना जो है जन भागीदारी में शामिल वेगा तो वे विकास योजना अधिक प्रभावी और समावेशी बनेगा। ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक संगठन और विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं वणा में बेनारी भागीदारी समाज ने एक नई और दिशा प्रदान कर रही है। और देखो सा जो बेनारी सक्रिय भागीदारियों शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय जैसा क्षेत्र में आप ही कैसे का सकारात्मक परिवर्तन देखवाने मल रहे है सा।
0: सही कह रहे हो सा। और देखो महिला आत्मनिर्भरता और जन भागीदारी ये दो ये अलग अलग पहलू नहीं है, ये
1: हाँ।
0: एक दूसरा रा पूरक भी
1: हाँ।
0: है। आत्मनिर्भर बना वेगा वे समाज रे विकास काम में वत्ती प्रभावी ढंग योगदान दे सकेगा। जदि कि भाई जन भागीदारी जो है महिला री अपनी क्षमता दिखावारी नेतृत्व विकसित करवारा अवसर भी देवे सा। जदि बेना निर्णय लेवारी प्रक्रिया में शामिल वेगा तो समाज में देखो समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्य ने मजबूती मिलेगा।
1: सही
0: सा।
1: बात है। और देखो साणी वास्ते इस तो आज टाइम री आवश्यकता है कि अपनी जो बेना है वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार अवसर और सुरक्षित वातावरण बनाने उपलब्ध कराया जावे। परिवार और समाज ने भी अपनी बेना रे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनानो चावे। अपनी बेना ने प्रोत्साहन और सम्मान देनी सोनारे सर्वांगीण विकास रो मार्ग आप कह सका प्रशस्त कर सका सा।
0: यानी यो कह सका कि भाई अपनी बेना जो है वह आत्मनिर्भरता और जन भागीदारी अगर वेगा बेनारी तो देश री प्रगति रे वास्ते यो बहुत जरूरी है। और बेना ने सशक्त बनाई ने वणा ने समाज रे हर क्षेत्र में समान अवसर दे ने एक समृद्ध विकसित और आत्मनिर्भर भारत रे निर्माण आपा कर सका सा।
1: सही बात है। और नीता भाई साथ ही हाउ जानकारी आप अपने कार्यक्रम में माध्यम दीदी। और देखो सा अगर आप प्रिय मन वे और कार्यक्रम में आगे बढ़ावा तो एक मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी अपने कार्यक्रम रे माध्यम सुनावा नहीं सर।
0: हाँ सा सुनो सा।

0: हाँ तो नीता भाई सा यो तो सुनियो संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा।
1: और देखो अबे बेना ने जानकारी करामा के भाई ग्रामीण विकास और सरकारी योजना कई कई चल रही है सा।
0: हाँ सा
1: भारत री देखो अधिकांश जनसंख्या जो है गांव में रहे वे अणि वास्ते देखो ग्रामीण विकास देश रे समग्र विकास रो खास आधार भी है।
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: ग्रामीण विकास रो अर्थ केवल गांव में सड़क बिजली और पानी जैसी जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि देखो लोगा रे जीवन स्तर में सुधार करनो, रोजगार रा अवसरा रो सृजन करनो, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा रो विस्तार और आर्थिक सशक्तिकरण भी है सा।
0: सही बात है। और देखो सर, एक विकसित ग्रामीण क्षेत्र देश की जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देवे सा। और देखो सर, जिते बात करिए ग्रामीण विकास से वास्ते केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर कई सारी योजनाएं संचालित कर रही है। और अणा योजनाओं रो मुख्य उद्देश्य आप कह सका कि

0: से वास्ते केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर कई सारी योजनाएं संचालित कर रही है। और अणा योजनाओं रो मुख्य उद्देश्य आप कह सका कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करनो, रोजगार बढ़ानो और लोगों ने आत्मनिर्भर बनानो है सा।
1: और देखो अणी में सब खास योजना री बात करा तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है जिन्हें मनरेगा भी कहवा सा। और देखो अणी योजना रे तहत ग्रामीण परिवार ने साल में 100 दिनारी रोजगार री गारंटी दी जावे। अबे देखो अणी रोजगार जो या योजना है अंडो नाम जी राम जी योजना है। और अबे ग्रामीण क्षेत्र रे महीने परिवार ने 125 दिन तक रोजगार री गारंटी रो प्रावधान रखियो है। जणियो कहिए आय बढ़ेगा और जीवन स्तर में भी सुधार वेगा।
0: सही बात है। देखो सा आते-आते बात करा प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण विकास रो एक महत्वपूर्ण चरण कह सका और अन्य माध्यमों गरीब और जरूरतमंद जो परिवार है वहाँ ने पक्का मकान उपलब्ध कराए जावे। अन्य प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे अंतर्गत गाँव ने आप कह सका बेहतर सड़कों जोड़ियों जी रो है। जड़ियों कही है कि परिवहन व्यापार और शिक्षा रा अवसर भी बढ़ रहा है सा।
1: लारिस देखो कृषि क्षेत्र रे विकास रे वास्ते भी देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चली जा रही है। अंडे देखो पात्र जी भी किसान भैया वना ने आर्थिक सहायता दी जावे। अंडे अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसान भाई ने आसानी ऋण उपलब्ध करावे सा।
0: सही बात है। और हाथे हाथे जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा रे विस्तार वास्ते भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रही है। और देखो सर जटे बात करिए ग्रामीण क्षेत्र में बेना ने सशक्तिकरण रे वास्ते भी स्वयं सहायता समूह ने बढ़ावो दीदो जा रो है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रे माध्यमों अपने बेना ने स्वरोजगार और छोटा व्यवसाय स्थापित करवारो अवसर प्रदान कीधो जा रो है। अणि यूं कहिए कि मणारी आय में बढ़ोतरी भई रही है और भी आत्मनिर्भर भी बन रही है सा।
1: लारेज देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रे तहत गावा में शौचालय निर्माण स्वच्छता रे प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। वटी जल जीवन मिशन रे माध्यम हर एक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचावारो प्रयास करियो जा रो है। अणि योजनाओं देखो लोगों ने स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार भी वेरियो है सा।
0: सही बात है। देखो सर जटे ग्रामीण विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा रो भी महत्वपूर्ण योगदान है तो सरकार जो है अलग अलग योजना रे माध्यमों विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र में और स्वास्थ्य संस्थान ने भी मजबूत बनाई रही है ताकि अपना ग्रामीण जो नागरिक है उन्होंने बेहतर सुविधाएं मिल सके सा।
1: यानी यो कही सका कि भाई ग्रामीण विकास देश रे संतुलित और समावेशी विकास रे वास्ते बहुत जरूरी है। सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्र रे लोगों रे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाई रही है। वडीस देखो अणा योजना रो सही क्रियान्वयन वे तो जो भी आम जन है वनारी सक्रिय भागीदारी मिलेगा ग्रामीण भारत और वत्तो सशक्त बनेगा समृद्ध बनेगा और आत्मनिर्भर भी बन सकेगा।
0: सही बात है। और देखो सर जानकारी रे सिलसिला ने दाटे विराम और नीता भाई साहब को तो एक और मनभावन राजस्थानी लोकगीत अपने कार्यक्रम में सुनावा नहीं सर।
1: हाँ सर।
2: It's music, okay?

0: हाँ तो नीता भाई साहब, यो तो सुनो आपी मन भावन राजस्थानी लोकगीत। और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और अबे अपने बहना ने जानकारी दा ग्रामीण पर्यटन और वर्षा जल संचयन रे बारे में। देखो सा ग्रामीण पर्यटन को और हाते हाते वर्षा जल संचयन जो है आज समय रा आपी यू कैसे का सतत विकास आ दो महत्वपूर्ण विषय। एक और तो आपकी ग्रामीण पर्यटन गांवारी संस्कृति परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता ने बढ़ावा दे दिया। हाँ बटा इस दूसरी ओर वर्कारो जो पानी है जल संचयन जल संरक्षण रा प्रभावी उपाय आपी अपने दिया। हाँ और अणा दो यू कही आपी कैसे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र रे आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रहा। हाँ सा
1: ग्रामीण पर्यटन रे अर्थ री बात करा तो देखो गांव रे प्राकृतिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जी आकर्षण है मना ने अनुभव करवा रे वास्ते पर्यटक के ग्रामीण क्षेत्र में जानो है। और
0: हाँ
1: देखो भारत रे गांव अपनी लोक संस्कृति पारंपरिक कला हस्तशिल्प लोक संगीत लोक नृत्य और प्राकृतिक सौंदर्य रे वास्ते भी प्रसिद्ध है सा। और ग्रामीण पर्यटन रे माध्यमों पर्यटक देखो ग्रामीण जीवन रे नजदीक हूँ हमचवारी कोशिश करे स्थानीय संस्कृति रो अनुभव प्राप्त करवाने देखो गांव में जाई रहा है सा।
0: सही बात है। देखो सा आप जेटे बात करिया ग्रामीण पर्यटन कई वीडियो है कि जो स्थानीय लोग है उन्होंने रोजगार और आय रा नया अवसर प्राप्त भी दिया है। आप ही देखा आजकल गांव में छोटा छोटा होम स्टे बन रहा है, हस्तशिल्प बिक्री बढ़ रही है, स्थानीय भोजन पर ज्यादा महत्व दीदो जा रो है और परिवहन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आने माध्यमों भी आप ही कह सका कि अपने जो गांव में रहवा वाला लोग है वनारी आय में बढ़ोतरी वे रही है। और हम कहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूती मिल रही है और अपना जो युवा पीढ़ी है जो कि शहरारी तरफ पलायन कर जावे वनारो पलायन भी कम वे तो जा रो है। और हाथे हाथे अंडे साथ ग्रामीण पर्यटन स्थानीय संस्कृति और परंपरा रे संरक्षण में भी सहायक सिद्ध वीडियो है सा।
1: और देखो वर्षा जल संचयन री बात

0: तरह तो देखो अंडो अर्थ है कि वर्षा रे पानी ने एकत्रित करनो, भविष्य रे उपयोग रे वास्ते सुरक्षित रखनो। भारत में देखो कई क्षेत्र में जल री कमी एक गंभीर समस्या है। असम में वर्षा जल संचयन जो है वो जल संरक्षण रो सरल सस्तो और प्रभावी उपाय है। अन्य महीने देखो वर्षा रे पानी ने छता तालाबा कुआ और दूजा जी जलाशय है वन में इकट्ठो करो जावे और भूजल स्तर बढ़ावा रे वास्ते जमीन में पहुंचायो जावे
1: सही
0: सा।
1: बात है। और देखो सर जिते वर्षा रे पानी रो संचयन री बात करें तो उन्हें कई सारा फायदा है। अन्य भूजल स्तर में वृद्धि वेवे, पेयजल री उपलब्धता बढ़ रही है और हाथे हाथे सिंचाई के वास्ते भी पर्याप्त जल प्राप्त हो रही है। और देखो सर यो जल संकट ने कम करवा रहे साथ साथ बाढ़ और जल भराव जैसी समस्या ने भी नियंत्रित करवा में मदद कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा रो जो पानी है वंडे संचयनों किसान भाई रे वास्ते विशेष रूप लाभकारी है क्योंकि यो पानी जो है कृषि कार्य रे वास्ते आसानी उपलब्ध मिल रही है सर।
0: और देखो आपा बात कर रहे हैं कि भाई ग्रामीण पर्यटन और वर्षा जल संचयन, तो देखो अना दोया में बहुत गहरो संबंध है।
1: हाँ
0: स्वच्छ जल स्रोत, हरित वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता कणी भी पर्यटन स्थल ने आकर्षक बनावे। अगर देखो गांव में वर्षा जल संचयन ने बढ़ावा दियो जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण वेगा और पर्यटन रे विकास रे वास्ते अनुकूल परिस्थितियां बनेगा सा।
1: सही बात है। और मतलब कुल मिलाई तो आपने यो इस केड़ो आपड़ी बेना ने कि देखो सर ग्रामीण पर्यटन और वर्षा रो जो जल संचयन है पानी रो दो ही ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण साधन है। ग्रामीण पर्यटन आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण ने बढ़ावा देवे। वनडे विपरीत अगर आप बात करा जो वर्षा रे जल संचयन और तो जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनावा में सहायता करे। तो देखो साणा दो ही चीजा ने अपनाई ना अपना ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग है वे और अधिक समृद्ध आत्मनिर्भर और आप कह सका वनारो जो पर्यावरण है इन्हें और ज्यादा समृद्ध बनाई सके सा।
0: सही कह रहा हो सा। और देखो जानकारी जटे कराई रहा आपको तो कार्यक्रम ने भी समृद्ध बनावा।
1: हाँ
0: जानकारी लारे लोक संगीत, लोकगीत, राजस्थानी गीत भेजावे तो कसो रे सा।
1: देखो सा वो कहना कि एकदम रंगी चोखो हो जा तो पचे वनी चोखा रंग रो तो अनुभव आप ही लाने सा।
0: तो हुणावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
1: हाँ सा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हाँ तो देखो सनीता भाई सा, यो तो सुनियो संदेश और लारे लारे मनभावन राजस्थानी लोकगीत सुनियो। और देखो सर, अभी आप ही अपने बहना ने जानकारी दे रहे हैं स्टैंड अप इंडिया योजना री। तो स्टैंड अप इंडिया योजना कई है और उन्होंने कई उद्देश्य है, किस तरह फायदा पहुँचे रही है बारे में जानकारी दाने सा।
5: हाँ सर, देखो स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार की एक खास योजना है और अंडी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 ने की दी। यह योजना देखो अंडो खास उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी ने स्वरोजगार और उद्यमिता रे वास्ते प्रोत्साहित करनो है सा।
4: हाँ तो देखो सा, यह योजना एक नयो व्यवसाय स्थापित करवारे वास्ते वित्तीय सहायता प्रदान करे, जनियो रोजगार अवसर बढ़े और देशी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुए। और देखो सा, योजना रे अंतर्गत लाभार्थिया ने 10 लाख रुपया लेन 1 करोड़ रुपया तक रो बैंक ऋण दीदो जावे।
5: और देखो यो ऋण नया व्यवसाय शुरू करवारे वास्ते, नया उद्यम स्थापित करवारे वास्ते दियो जावे। और देखो स्टैंड अप योजना रो खास उद्देश्य है कि समाज रा जो वंचित वर्ग है और बेना है बनाने आर्थिक रूप सशक्त बनानो है।
4: सही बात है। देखो सानी योजना रो एक महत्वपूर्ण लाभ यो भी है कि लाभार्थियों ने केवल ऋण ही नहीं बल्कि व्यवसाय स्थापित करवारे वास्ते संबंधित परामर्श और सहयोग भी प्राप्त हुए, नया उद्यमिया ने व्यवसाय चलावा में आसानी हुए और सफलता की संभावना बढ़ जावे।
5: और देखो बेनारे वास्ते यह योजना विशेष रूप लाभकारी सिद्ध हुई रही है। अणी में देखो बेना छोटा और मध्यम स्तर उद्योग, सेवा केंद्र, दुकाना और दूजा जो व्यवसाय है वो स्थापित करने आर्थिक रूप जो है आत्मनिर्भर बन रही है सा।
4: हाँ तो देखो सा, या तो वे यो टेम अपने योजना रो और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा। तो नीता भाई साहब इशारों में समझ रही हूँ, एक और मनभावन राजस्थानी लोकगीत आप सुनावरो कह रहे हो नहीं सर?
5: हाँ सर बिल्कुल, जानकारी ला रहे गीत तो मैनो ही चाहे सर तो सुनावा।

0: तो भावना भैसा देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आप सुनाए और जटे जानकारी री बात कर रहे हाँ तो अब देखो बिना स्वास्थ्य हाउ लेगा जदीस जो है गीत संगीत रो आनंद भी लेगा।
1: और आते आते कैल्शियम युक्त तो भोजन भी तो कराना पड़ेगा नहीं सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो बिना ने स्वस्थ जीवन रे वास्ते संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। कैल्शियम एक खास खनिज है जो शरीर री हड्डियाँ और दांत ने मजबूत बनावे। और देखो बिना रे जीवन रे वास्ते तो देखो विभिन्न चरणा में आप जाना भाई किशोरावस्था गर्भावस्था स्तनपान और वृद्धावस्था में पर्याप्त कैल्शियम री जरूरत भी वे
1: सही
0: वैसा।
1: बात है। और देखो सा कैल्शियम की कमी हो हड्डियाँ कमजोर वही सके और अनेक प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं वही सके। और जटे आप ही जाना कि कैल्शियम शरीर में हड्डियाँ और दांतों का निर्माण और वनारी मजबूती रे वास्ते आवश्यक है। अंडे अलावा यो मांसपेशिया की कार्य प्रणाली हृदय की धड़कन ने नियंत्रित रखवा में रक्त रा थक्का बनावा में और तंत्रिका जो तंत्र है विन्हें सुचारू संचालन में भी सहायता करे सा।
0: तो देखो बिना आपने दैनिक आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ ने जरूर शामिल करें। अंडे वास्ते देखो दूध और दूध उबणिया तका जी पदार्थ है ई
1: हाँ
0: कैल्शियम रा सब बढ़िया स्रोत माना गया है। जिसरे कि दूध दही पनीर छाछ और मक्खन रो नियमित सेवन जो है शरीर में पर्याप्त कैल्शियम प्रदान करे सा।
1: सही बात है। और अन्य हाथे दे देखो सा हरे पत्तेदार सब्जियां जिस तरह की पालक मेथी सरसों रो साग और बथुआ भी कैल्शियम भरपूर वे तिल सोयाबीन राजमा चना बादाम और

0: अलग अलग प्रकार का मेवा भी कैल्शियम राचा स्रोत वेवे।
1: रागी में भी देखो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम वेवे अणी वास्ते देखो आहार महीने भी शामिल करनो लाभदायक रहे। कैल्शियम रे लारे लारे विटामिन डी रो सेवन भी देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम रे अवशोषण में सहायता करे सा।
0: हाँ, तो अंडे वास्ते सुबह दी धूप विटामिन डी रो प्राकृतिक स्रोत है, और अंडे वास्ते अपनी बहना ने नियमित रूप को समय जो है धूप में बिताना चाहे। तो मतलब कुल मिले इन तो आप यूं कह सके नीता भाई सा कि कैल्शियम जो है बेनारे स्वास्थ्य रे वास्ते अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है।
1: और देखो यो आवश्यक पोषक तत्व बेना ने मिलेगा तो बेना स्वस्थ रहेगा।
0: सही बात है।
1: और देखो जानकारी तो और देवा, लेकिन घड़ी आ रही देखा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी क्यों सा, तो चाला सा राम राम
0: राम
1: सा।
0: राम सा।

सहेलियरी बाड़ी, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में बेहतरीन नगमे। पहला गीत बरेली की बर्फी फिल्म से अर्को मुखर्जी की आवाज में।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत के दौरान एक प्यारे से गीत आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल की आवाजों में, एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हीर ये फिल्म से अरिजीत सिंह और जसलीन रॉयल की आवाजों में।

जन्नाटू फिल्म से ये गीत तभी आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। अगली आवाज़ अरिजीत सिंह की है। फिल्म एजेंट विनोद से आपको एक और गीत सुनवाते हैं।

एजेंट विनोद फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत का। अगली आवाज़ मोहित चौहान की है, फिल्म का नाम जब वी मेट।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फिल्म संगीत में आप बेहतरीन नगमे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप थे आरजे एकता के साथ। तो वक्त हो चला है विकास चर्चा का। विकास चर्चा में आज का विषय है स्टार्टअप इंडिया योजना। नमस्कार। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जो स्टार्टअप्स के विकास में सहयोग दे, सतत आर्थिक विकास को गति दे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करे। यह योजना युवा उद्यमों को वित्तीय सहायता, कर छूट, आसान अनुपालन और वित्त पोषण एवं मार्गदर्शन तक बेहतर पहुंच प्रदान करके उनके विचारों को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत पंजीकृत स्टार्टअप्स को 3 साल की आयकर छूट, कुछ कानूनों के तहत स्व प्रमाणीकरण और सरकारी खरीद में प्राथमिकता का लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त यह पहल नियामक बोझ को कम करने में मदद करती है और पेटेंट आवेदनों की त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देती है। स्टार्टअप इंडिया योजना नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करती है, स्टार्टअप्स को निवेशकों और इनक्यूबेटरों से जोड़ती है और ज्ञान साझा करने की एक मंच तैयार करती है। कुल मिलाकर ये भारत को नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने का एक सशक्तिशाली साधन है। तो बात करते हैं स्टार्टअप योजना क्या है। भारत में बेरोजगारी दर को कम करने के उद्देश्य से स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। 2017 और 2019 के बीच बेरोजगारी दर 4% से बढ़कर 7.6% हो गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश के उद्यमियों को किफायती व्यावसायिक वित्तीय पोषण उपलब्ध कराना है। यह योजना महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के उद्यमियों को 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की रियायती ऋण राशि प्रदान करती है। लिए स्टार्टअप पंजीकरण की चरण दर प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। तो पात्रता जांच इस बात की पुष्टि करती है कि आपका स्टार्टअप भारत में पंजीकृत है, 10 साल से कम पुराना है और इसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण करने की बात करें तो अपने स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर पंजीकृत करें, आवेदन पत्र भरें और पर्यावरण एवं श्रम कानूनों के अनुपालन को स्वप्रमाणित करें। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरना आवश्यक है, जिसमें व्यवसाय से संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करनी होगी। स्वप्रमाणीकरण इस प्रक्रिया का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्टार्टअप को यह स्वप्रमाणित करना होगा कि वे कुछ पर्यावरणीय श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं। सफल पंजीकरण के बाद स्टार्टअप को एक विशिष्ट मान्यता संख्या जारी की जाएगी, भविष्य में उपयोग के लिए इसे ध्यान में रखें। इन कदमों के अलावा स्टार्टअप्स को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का नियमित रूप से अनुपालन बनाए रखने की आवश्यकता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के माध्यम से नेटवर्किंग के अवसर, मुक्त शिक्षण कार्यक्रम और अतिरिक्त सहायता के लिए सरकारी योजना और वेंचर फंड तक पहुँचे जैसे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। स्टार्टअप योजना की विशेषता और लाभ के बारे में बात करें तो योजना स्टार्टअप के लिए संपूर्ण व्यवसाय पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाती है। स्वप्रमाणीकरण से नए व्यवसायों के लिए नियामक अनुपालन लागत कम हो जाती है। सरकार पेटेंट प्रक्रिया को तेज करने के लिए कम लागत वाली कानूनी सहायता प्रदान करती है। इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य अगले 4 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए जुटाना है। स्टार्टअप को फंडिंग हासिल करने के सहायता के लिए क्रेडिट गारंटी योजना उपलब्ध है। स्टार्टअप्स को पूंजीगत लाभ कर छूट का लाभ मिलता है। यह योजना पात्र स्टार्टअप के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देती है, संबंधित उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है। स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद के लिए नियमों को अधिक लचीला बनाया गया है। पेटेंट

दाखिल करने और अन्य कानून मामलों में सहायता के लिए कानूनी सलाहकार पैनल उपलब्ध। पात्रता और मानदंड की बात करें तो यह संस्था एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। संगठन का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अनुमोदन के लिए सिफारिश पत्र आवश्यक है। कंपनी को नवीन विचार उत्पाद या सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। व्यवसाय नवस्थापित होना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। कंपनी का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यह कंपनी किसी मौजूदा व्यवसाय के बंद होने या पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप नहीं बननी चाहिए। तो आज हमने बात करी स्टार्टअप योजना की।

0: अभी आपने सुनी विकास चर्चा और अब हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे दोपहर समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माही में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति

0: को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है, ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
1: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने

0: की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम भावना भाईसा, राम राम।
1: राम राम नीता भाईसा, राम राम।
0: कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला, हंगलाई किसान भाई बहना ने अपनो राम राम सा। देखो सा भावना भाईसा, कार्यक्रम में आया हाँ, जानकारी लाया हाँ, लारे देखो किसान भाई रे वास्ते मनोरंजन रे वास्ते गीत संगीत भी लेने आया
1: हाँ। सही बात है।
0: और देखो अबाणू खेती बाड़ी रो काम किसान भाई करेगा तो कई काम जो है किसान भाई करे तो दलहनी फसला रो कई महत्व है सब पहला देखो यो बतावा सा।
1: सही बात है। और जटे अपने देश दुनिया में बात करे हाँ तो दाला रो सबो बड़ो उत्पादक उपभोक्ता और आयतक अपनो देश भारत है। कृषि और मानव स्वास्थ्य में दलहनी फसला रो महत्वपूर्ण स्थान है। और जटे बात करें दाला री जो वी केवल आप केवा न केवल शाकाहारी आबादी रे लिए प्रोटीन रो मुख्य स्रोत है बल्कि ये जो मिट्टी री उर्वरता ने बनाए रखवा रे वास्ते भी आप कह सका जबरदस्त भूमिका निभावे सा।
0: सही कह रहे हो सा। और देखो पोषण और मानव स्वास्थ्य रे दृष्टिकोण रे महत्व री बात करा तो दलहनी फसला मानव आहार रो एक अनिवार्य हिस्सो भी है। विशेष रूप देखो अपना देश जिससे कि बहुत जो शाकाहारी आबादी वालो देश है तो अटे जो है प्रोटीन रो यो पावर हाउस रो काम भी करे दाला।
1: सही बात है सा। और देखो सर जिते आप ही प्रोटीन रे पावर हाउस री बात की दी तो दाला में अनाज और गेहूं और चावल की तुलना आप ही कैसे का दो तीन गुना अधिक प्रोटीन पायो जावे और अणी वास्ते सीने आप ही पावर हाउस के वासा।
0: लारिस देखो अणी रे महीने आवश्यक अमीनो एसिड भी वेवे जो कि अण में दाल में लाइसिन नामक अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में वेवे अनाज में यो कम वेवे। यदि अनाज और दाला ने मिले ने आप देखियो वे का भैया आप दाल चावल खावा खिचड़ी खावा तो यो शरीर में पूरी तरह जो है प्रोटीन आहार देवे सा।
1: सही बात है। और हाथे हाथे बात करा जो सूक्ष्म पोषक तत्वों भरपूर जो है दलहनी फसला जो है आयरन जिंक मैग्नीशियम पोटेशियम और फॉस्फरस जैसा आवश्यक खनिजारो बेहतरीन स्रोत है। यो अपने शरीर में खून की कमी जिन्हें आप एनीमिया का और कुपोषण लड़वा में भी मदद करे सा।
0: दाला देखो विटामिन रो भंडार भी वे वे में देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसा थायमिन राइजोफ्लेमिन और फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पायो जावे जो कि देखो बेनारे गर्भावस्था में और भ्रूण रे विकास रे वास्ते भी बहुत जरूरी है।
1: सही बात है। और नीता भाई सा हाथे हाथे जटे बात कर रहे हैं कि दाला में कम फैट और शून्य कोलेस्ट्रॉल वे तो दाला में जो वसा री मात्रा नीरे बराबर वे वे और अनमें कोलेस्ट्रॉल भी नी वे वे हृदय रोगिया रे वास्ते और वजन जो नियंत्रित करवा वाला लोगा रे वास्ते यो एक आदर्श भोजन है सा।
0: उच्च फाइबर भी देखो दाल में मिले सा जो कि पाचन क्रिया ने दुरुस्त रखे कब्ज ने रोके और मलाशय रे कैंसर रा खतरा ने भी कम करे सा।
1: सही बात है। और देखो सा हाथे हाथे बात करा मधुमेह नियंत्रण में सहायक री तो जटे दाला री बात करें कि दाला में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम वेवे सा अनु मतलब यो है कि अणा ने खावा रे बाद रक्त में शक्करा रो स्तर अचानक नहीं बढ़े। जड़ियों कहिए कि जो मधुमेह रोगी है मनारे वास्ते यो सर्वोत्तम आहार वेवे सा।
0: तो देखो दाला रो और कई महत्व है खेती बाड़ी में या मिट्टी रे स्वास्थ्य में अन्य बारा में जानकारी करावा बटा पहली आपको तो भाई बढ़िया सो राजस्थानी गीत होने ही देवा।
1: हाँ सा होना नहीं है मन भावन राजस्थानी लोकगीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: हाँ तो नीता भाई सा, यो तो सुनियो आप ही संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा। और देखो सा, जटे आप ही बात कर रहा हा कि दलहनी फसलारो कई महत्व है, तो स्वास्थ्य से प्रति तो आप ये अबार बातचीत की दी। अभी देखो सा, दलहनी फसलारो आपने खेती बाड़ी में और मिट्टी रे स्वास्थ्य रे ले कई महत्व है, अंडे बारे में किसान मैंने जानकारी दा सा।
4: क्योंकि देखो सा, दलहनी फसलारो आप कही सका भाई, दलहनी फसला ने आप मिट्टी रो डॉक्टर भी के मा।
3: हाँ हाँ।
4: क्योंकि ये देखो कृषि भूमि ने पुनर्जीवित करवा रो काम भी करे सा।
3: सही बात है। और देखो सा, जटे बात करा दलहनी फसला री जो जड़ा है मुना में राइजोबियम नाम रा जीवाणु री ग्रंथिया पाई जावे सा। ये जीवाणु वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन ने सोखे उन्हें मिट्टी में स्थिर करे सा। और अणु कहिए कि अपनी जो मिट्टी है उनमें प्राकृतिक उर्वरता बढ़े सा।
4: और देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण रे कारण दलहनी फसला रे बाद जा भी फसल किसान भाई अगली लेवे, जिसरे की गेहूं या धान वेवे, तो वन में कम यूरिया या बचे रासायनिक खाद री जरूरत वेवे।
3: हाँ
4: हाँ। कही है किसान भाई री लागत भी घटे सा।
3: सही बात है। और दलहनी फसला री जो जड़ा है वे गहरी और फैली लगी वेवे, जो कि आप ही कह सका कि मिट्टी ने बांधन रखे। अणु भारी वर्षा या हवारे कारण वेवा वालों जो मृदा अपरदन है वो भी रुखे। और साथ ही यह जो है मिट्टी में पानी और हवा रे संचरण रे बेहतर बनावे सा।
4: मूंग उड़द या बचे ग्वार जैसी जी फसला है भावना बैसा, ये पकवा रे केड़े कही वे या बनियों पहले इस मिट्टी में वन्ने पलट देमा तो हरी खाद रो काम करे सा। अणियों कही है मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ है वंडी मात्रा बढ़ेगा, और या जो है जैविक खाद रो काम करेगा, तो अणियों रासायनिक खाद जो है वा

0: कम चावे का
1: सही
0: सा
1: बात है। और देखो साहब ही तो टेम टेम पे किसान भाई ने जानकारी देवी सा कि जैविक खाद वो या हरित खाद वो वन्य वनस्पत अगर आपने रासायनिक खाद वापरेंगे तो उनका कई सारा नुकसान है नहीं सा। तो किसान भाई ने बार बार यही चीज आप ये अपने कार्यक्रम में समझावा कि रासायनिक खाद के ऊपर जोर नहीं देना है, आपने जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, अना चीजा ने वापरनी है सा।
0: क्योंकि अना चीजा ने वापरांगा देखो प्राकृतिक वातावरण भी हाउ रहेगा, फसला भी स्वस्थ रहेगा और मानव स्वास्थ्य भी जो है वो हाउ रहेगा। अंडे
1: सही
0: लारिस
1: बात
0: देखो
1: है।
0: दलहनी फसला ने उगावार वास्ते देखो महंगा जो उर्वरक है कीटनाशक है बहुत अधिक पानी री जरूरत बनाने नहीं वेवे और अंडी खेती में लागत कम आवे और बाजार में देखो दालारा दाम भी हाउ मिल जावे जणू किसान भाई ने वत्तो मुनाफो भी बेच सके
1: सही
0: सा।
1: बात है। और देखो सा ये ऐसी फसल है जो कि कम समय में उगाई जा सके। और देखो सा अन्य दो जो अपनी मुख्य फसल रे बीज जो खाली टेम वे जाए जो सीजन में भी उगाई ना पी अपना किसान भाई जो है अनु अतिरिक्त आय या आमदनी ले सके सा।
0: तो देखो सा दलहनी फसला नो कतरो महत्व है, एक तो देखो अपने स्वास्थ्य रे वास्ते भी महत्व है,
1: हाँ
0: लारे
1: हाँ
0: देखो खेती करने तो वनडे जो मिट्टी है वनडे वास्ते भी महत्व है, तो किसान भाई ने दो पया कोड़ी भी देखो मिल जावे।
1: सही बात है। और देखो सर
0: और
1: जटे आप कहा कि घर में पया कोड़ी रोज हाउ तरीकों संचार वेवे तो घर परिवार में खुशहाली छाई रहे। और घर परिवार में खुशहाली तो देखो सर आप कहा ना कि गर्मी रो टाइम चल रहा है, परिवार में बहन बेटी आई गई भी है और तो बढ़िया मन भावन राजस्थानी लोकगीत तो और सुनाऊंगा तो देखो सर कार्यक्रम में 4 चांद लाग जाएगा।
0: तो लगावा सा 4 चांद और सुनावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
1: हाँ सर।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हाँ तो नीता भाई सा यो तो सुनियो संदेश और लारे लारे मन भावन राजस्थानी लोकगीत भी सुनियो सा। और देखो सा कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और आप ही किसान भाई ने जानकारी दा कि जो मिट्टी की उर्वरता है उपजाऊपन है विने किस तरह बढ़ावा वने वास्ते कई कई उपाय अपना किसान भाई वापर सके अंडे बारे में जानकारी देवा सा।
3: देखो सा मिट्टी री उर्वरता कणी भी सफल खेती बाड़ी रे वास्ते और हाउ उत्पादन रे वास्ते जो है खास आधार वे
2: हाँ हाँ।
3: क्योंकि देखो लगातार रासायनिक खाद रो प्रयोग करा पा और वत्तो उपयोग कर ले मा संतुलित जो फसल चक्र है और दोषपूर्ण जो कृषि पद्धतियाँ आप नहीं ले मा तो अणी रे कारण देखो मिट्टी री प्राकृतिक उपजाऊ जो क्षमता है वह लगातार कम वेती जा रही है।
2: सही बात है। नहीं तो भाई सा मिट्टी ने स्वस्थ और लंबा समय तक उपजाऊ बनाए रखवारे वास्ते जैविक भौतिक और वैज्ञानिक उपायों अपने समन्वय करनो बेहद जरूरी है सा।
3: जैविक खाद रो नियमित और प्रचुर मात्रा में उपयोग करवा देखो मिट्टी में जीवांश री मात्रा बढ़े
2: हाँ।
3: और या मिट्टी री उर्वरता सुधार वारो सब अचूक उपाय है सा।
2: सही बात है। देखो सा अच्छी तरीको सड़ी लगी जो गोबर री खाद है मिट्टी री जल धारण क्षमता ने बढ़ावे विने भुरभुरो बनावे और आणी बुवाई रे आप ही कैसे का 3-4 सप्ताह पहले खेत में मिलाणो चावे सा।
3: लारेस देखो केंचुआ खाद में नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास रे लारे लारे कई सूक्ष्म पोषक तत्व और फायदेमंद जो एंजाइम्स वे भी प्रचुर मात्रा में वे वैसा।
2: सही बात है।
3: और यह जो है मिट्टी रे जैविक स्वास्थ्य ने तुरंत सुधारे।
2: सही है। और देखो सर जटे बात करिया कि फसल का जो अवशेष है सूखी पत्तियां हैं और घरेलू रसोई जो जैविक कचरो है विने भी सड़ाई वनाई लगी जो खाद है मिट्टी में कार्बन रो स्तर बढ़ावे।
3: खेतरी जा उपजाऊ शक्ति है विने प्राकृतिक रूप रिचार्ज करवारे वास्ते भी देखो हरी खाद एक बेहतरीन और सस्ती तकनीक है। अंडे वास्ते देखो दलहनी फसला ने ढेंचा सनई या पचे ग्वार ने उगाणो चावे सा।
2: हाँ। और देखो सर नीता भाई सर जंडे मापी देखा कि फसला में फूल आवा वाली अवस्था वे लगभग 40-50 दिन ने बाद तो वणा ने रोटावेटर या हॉल री मदद तो मिट्टी में ही जोते दबाई देवे और अणियों कहिए कि आप ही कह सका कि मिट्टी में जो भारी मात्रा में नाइट्रोजन और जैविक कार्बन मले जणियों मिट्टी री सरस

0: रचना में जादू या पिकेश का एकदम सुधार आवेसा।
1: और देखो एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगावाऊँ जो है मिट्टी रा पोषक तत्व जो है भी खत्म हो जावे और बीमारियां बढ़े। तो किसान भाई ने ध्यान रखना चाहे कि भाई बार बार जो है खेत में एक ही फसल नहीं बोवे सा।
0: हाँ हाँ, और देखो सर जटे एक ही फसल में नहीं बोवरी बात करें, हाँ तो देखो सर अनाज वाली जो फसल है गेहूँ बाजरा मक्का रे बाद दलहनी फसल जिस तरह की चना मूंग उड़द अरहर ने चक्र में शामिल अपना किसान भाई कर सके सा।
1: जैविक उर्वरक जो जैव उर्वरक है जीवा ने जीवित रूप में वे जो कि भाई मिट्टी में मौजूद अघुलनशील तत्व ने फसलारे वास्ते सुलभ बनावे।
0: हाँ हाँ, और एक चीज और बताऊं कि देखो सा बिना जांच किदा अंधाधुन अपने मिट्टी में खाद डालनो जो है अपने मिट्टी ने एक तरीके आप कैसे का बीमार बनी जा। तो हर 2-3 साल रे अंतराल में अपने खेत री मिट्टी री जांच जो है सरकारी या जो प्राधिकृत प्रयोगशाला है वन में जाई ना अपने खेत री मिट्टी रो नमूना लेन जरूरी जांच करानी है सा।
1: बढ़िया बात बताई सा, क्योंकि देखो मिट्टी री अगर रिपोर्ट आई जाएगा तो अपने खबर पड़ेगा कई तत्व कम है कई नाकनों और वंडे अनुसार अपन संतुलित उर्वरक रो प्रयोग करांगा तो मिट्टी उर्वरता बढ़ेगा मंडी। और अक्सर किसान भाई देखो केवल DAP और यूरिया पे ध्यान देवे जणियु कही है सूक्ष्म तत्व री कमी मिट्टी में ने बह जावे सा।
0: और देखो सा मिट्टी री जो ऊपरी परत ने ढाके राखो भी वन में जो उर्वरता है वह मणी रेवे अंडे वास्ते जैविक मल्चिंग फसल अवशेष पुआल और सूखी घास या पछे गन्ना री पत्तियों खेतरी मिट्टी ने ढक देवे सा।
1: और देखो खेतरे महीने उचित जल निकासी रो भी आपने जो है प्रबंध कर लेना चाहे। और आधुनिक सिंचाई पद्धतियाँ जिस तरह की टपक सिंचाई है फव्वारा प्रणाली है अन्नारो उपयोग आप कर लांगा तो नहीं देखो मिट्टी रो कटाव रुकेगा और पोषक तत्व जो है भी फालतू में अटी वटी बेवेगा नहीं।
0: सही बात है। और ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई मिट्टी रे भीतर छिपे लगा जो हानिकारक कीड़ा रा जो अंडा है फंगस है और आप कह सका कि खरपतवार जो बीज है भी नष्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ ही कहा कि देखो सा मिट्टी री जो वायु संचार क्षमता है वह भी बढ़ेगा जनू कहिए कि बरसात रो पानी जमीन रे अंदर अच्छी तरीके सोखियो जा सके।
1: और लारिस देखो रासायनिक कीटनाशक और खाद रो उपयोग भी अपने सीमित मात्रा में करना चाहे जिस तरह की आप पहला बतायो हो, क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशक रो प्रयोग करांगा तो मिट्टी री जा उर्वरा शक्ति है वह खत्म हो जाएगा। और अंडी जगह अगर नीम रो तेल है बवेरिया बेसियाना ट्राइकोडर्मा या बचे फोरोमेन ट्रैप है अंडो उपयोग कर लांगा ताकि मिट्टी रो जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो सुरक्षित रह सके सा।
0: तो देखो सा कुल मिले नीता भाई सा जो छोटी छोटी और अनमोल जानकारी आपी दीदी अपने किसान बहने की मिट्टी री उर्वरता शक्ति बढ़ावे वास्ते कई छोटी छोटी सटीक उपाय अपना किसान बहने अपनाना है तो निश्चित रूप अगर वनारी मिट्टी स्वस्थ रहेगा तो वनारो जो उपजाऊ चीजा है जंडो उत्पाद बनाने वास्ते भी जो मेहनत कर रहे हैं वो हाउ तरीकों बनाने आमंद मिल सकेगा।
1: बिल्कुल सा मेहनत बेकार नहीं जाएगा आमद नहीं बढ़ेगा मुनाफो वेगा तो देखो लाभ वेगा। और लाभ अपने कार्यक्रम में भी करा मांग भाई जानकारी दे रहा लारे लारे गीत संगीत भी भेजा वे तो किसान भाई मनोरंजन भेजाएगा तो सुना बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
0: हाँ तो सुना नहीं सा।

0: तो भावना भाई साहब देखो जानकारी दीदी लारे लारे बढ़िया सो मन भावन राजस्थानी गीत सुनायो अंडे लारे देखो घड़ी आड़ी देखा तो अपने कार्यक्रम रो टेम भी वे गयो
1: तो आप ये
0: चाला
1: आज्ञा लानी किसान भाई।
0: हाँ सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: सा।
1: सा।

0: कृषि जगत ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और वहां से हम सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। क्रिकेट में दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278

0: रनों का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में बिना कोई विकेट खोए 65 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, 3:05 हो चुके हैं। हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:05 पर सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार उदयपुर, शाम हो चुकी है और अब मौसम भी कह रहा है कि थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा जानिए और थोड़ा मनोरंजन का तड़का लगाइए। इसलिए ले आए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जहां मैं हूं आपकी अपनी वंदना
1: और मैं हूं प्रेरणा। लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी शाम जहां होगी जानकारी भी, रहस्य भी, सफर भी और दुनिया भर की दिलचस्प बातें भी।
0: आज की शुरुआत करेंगे एक बेहद ज़रूरी मुद्दे से, भारत की साक्षरता दर, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज ही आगे बढ़ता है।
1: फिर खुलेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय अपराधों के पन्ने और बात होगी उस नाम की जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं, जैक द रीपर।
0: इसके बाद निकल पड़ेंगे ट्रैवल डायरीज में और घूमेंगे खूबसूरत चामुंडी हिल्स की वादियों में, बिना टिकट, सिर्फ कल्पनाओं के सहारे।

0: और जानेंगे प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कई सपनों को रोजगार की उड़ान दे रहा है।
1: इतिहास और प्रेरणा के पन्नों से मिलेंगे बिरसा मुंडा, महान चित्रकार MF हुसैन और भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी से जुड़ी रोचक बातें।
0: साथ ही होगी ग्लैमर की दुनिया से भी बातें नेटली पोर्टमैन और जॉनी डेप की।
1: और शो के आखिर में मिलेंगे आपके पसंदीदा सेगमेंट्स, जो कि है आज का इतिहास, ताज़ा स्पोर्ट्स की खबरें और नज़र डालेंगे शेयर मार्केट की चाल पर भी।
0: तो कहीं मत जाइए, चाय की चुस्कियों के साथ सफ़र जारी रखिए हमारे साथ, क्योंकि ये अगले कुछ पल होंगे जानकारी, मनोरंजन और मुस्कुराहट के नाम।

0: तो आज के उभरते भारत सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो किसी भी देश की असली ताकत होती है, वह है शिक्षा। क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे होते हैं तभी देश सही मायनों में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल वंदना, और भारत के लिए अच्छी खबर ये है कि देश की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारत की साक्षरता दर करीब 80.9% तक पहुंच चुकी है, जबकि 2011 में ये लगभग 73% थी। यानी पिछले कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है।
0: और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे युवाओं में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं में यह आंकड़ा 94% से भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आज की नई पीढ़ी को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं और लगभग हर युवा पढ़ना लिखना जानता है।
1: वहीं 15 से 59 साल के कामकाजी वर्ग में लिटरेसी रेट करीब 84.5% है, लेकिन 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में ये आंकड़ा अभी भी लगभग 55 से 60% के बीच में है। इसकी वजह यह है कि कई दशक पहले देश के कई हिस्सों में स्कूल और शिक्षा की सुविधाएं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं थी।
0: दोस्तों, इस बदलाव के पीछे कई सरकारी योजनाओं का भी बड़ा योगदान है, जैसे कि उल्लास, जो कि है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य है 15 साल के ऊपर के करोड़ों लोगों को पढ़ाना लिखाना सिखाना। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसी योजनाओं ने भी शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।
1: लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या पूरे देश में शिक्षा का स्तर एक जैसा है?
0: अब तक तो नहीं, अभी भी कुछ राज्यों में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। जहाँ केरल, मिजोरम और कुछ अन्य राज्य बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ पिछड़े राज्यों में अभी भी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है और शिक्षा तक पहुँचना एक चुनौती है।
1: तो आखिर इन राज्यों में लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाई जा सकती है? सबसे पहले स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस शिक्षा से जोड़ना होगा। कई बच्चे आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ देते हैं, इसीलिए छात्रवृत्ति और सरकारी सहायता को और मजबूत बनाने की ज़रूरत है।
0: दूसरा बड़ा कदम हो सकता है डिजिटल शिक्षा। आज मोबाइल और इंटरनेट गाँवों तक पहुँच चुका है। अगर ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी और लोकल लैंग्वेज में कंटेंट उपलब्ध कराया जाए तो दूर दराज के इलाकों में भी शिक्षा पहुंच सकती है।
1: और लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान देना भी बेहद ज़रूरी है। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां इसका फ़ायदा उठाती है। यही वजह है कि महिला शिक्षा को किसी भी समाज के विकास की रीढ़ माना जाता है।
0: इसी के साथ साथ स्कूलों में अच्छे शिक्षक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ स्कूल खोल देना काफ़ी नहीं है, वहाँ अच्छी पढ़ाई भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और महत्वपूर्ण बात है एडल्ट लिटरेसी, यानी वयस्क शिक्षा। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश बचपन में पढ़ नहीं पाए, और अगर उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए तो वे आर्थिक और सामाजिक रूप से ज़्यादा सशक्त बन सकते हैं।
0: तो दोस्तों, लिटरेसी सिर्फ किताब पढ़ लेने का नाम नहीं है, इसका मतलब है अपने अधिकार समझना, डिजिटल दुनिया से जुड़ना और बेहतर नौकरी पाना और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता विकसित करना।
1: और जब देश का हर नागरिक शिक्षित होगा तभी विकास, विकसित भारत का सपना और ज़्यादा मजबूत होगा।
0: तो आंकड़े यही बताते हैं कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब अगला लक्ष्य है सिर्फ लिटरेसी बढ़ाना नहीं, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे और हर नागरिक तक पहुंचाना। क्योंकि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो प्रेरणा, शिक्षा की बात हो और रोजगार की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आखिर पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और दूसरों के लिए भी अवसर पैदा कर सके।
3: बिल्कुल वंदना, और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP, जो सिर्फ नौकरी ढूंढने की नहीं बल्कि खुद रोजगार पैदा करने की बात करती है।
2: तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है लेकिन पैसे की कमी है जो आपको रोक रही है, तो PMEGP आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है। इस योजना का मकसद है गांव और शहर दोनों जगह छोटे उद्योग और बिजनेस शुरू करवाना ताकि रोजगार के नए अवसर बन सके।
3: दोस्तों, इस योजना के तहत अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं आप, तो आपको 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। वहीं सर्विस या बिजनेस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण इसमें उपलब्ध कराया जाता है।
2: और सबसे खास बात है, सरकार इसमें सब्सिडी भी देती है, यानी पूरी रकम आपको वापस नहीं चुकानी पड़ती। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सामान्य वर्ग के लोगों को 25% तक और SC ST OBC, महिला, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक या दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 35% तक की सब्सिडी मिल सकती है।
3: वहीं शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग को 15% और विशेष श्रेणी के आवेदकों को 25% तक सब्सिडी दी जाती है। यानी सरकार खुद आपके बिजनेस की शुरुआती लागत का एक हिस्सा उठाने में मदद करती है।
2: अब कई लोग सोचते हैं कि लोन लेने के लिए बड़ी संपत्ति या गारंटी चाहिए होगी, लेकिन PMEGP एक बड़ी खासियत ये देती है कि 10 लाख रुपए तक के लोन पर किसी भी तरह की गारंटी या संपत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है।
3: और खुद का निवेश भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सामान्य वर्ग के आवेदक को प्रोजेक्ट लागत का सिर्फ 10% और विशेष श्रेणी के लोगों को केवल 5% राशि खुद लगानी होती है।
2: यानी अगर आपके पास हुनर है, मेहनत करने का जज्बा है और एक अच्छा बिजनेस प्लान है, तो पैसों की कमी अब उतनी बड़ी बाधा नहीं रह जाती।
3: इस योजना की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई आय सीमा नहीं रखी गई है, यानी कि आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है

0: तो कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है।
1: सिर्फ व्यक्ति ही नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, पंजीकृत संस्थाएं और ट्रस्ट भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
0: अब सवाल आता है कि इसके लिए आवेदन कैसे करें। इसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए KVIC के PMEGP पोर्टल या जनसमर्थ पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र और एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR की जरूरत पड़ती है।
1: आज के दौर में अगर कोई डेयरी यूनिट, फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स यूनिट, डिजिटल सर्विस सेंटर, फर्नीचर यूनिट या कोई छोटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहता है तो PMEGP उसके लिए एक मजबूत सहारा बन सकता है।
0: याद रखिए दोस्तों, विकसित भारत सिर्फ सरकारी नौकरियों से नहीं बनेगा। जब ज्यादा से ज्यादा युवा उद्यमी बनेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे और दूसरों को रोजगार देंगे, तभी देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी।
1: तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई हुनर है और कुछ नया करने का सपना है तो शायद PMEGP आपके उस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता बन सकता है।
0: क्योंकि उभरता भारत सिर्फ रोजगार ढूंढ नहीं रहा बल्कि रोजगार पैदा भी कर रहा है।
2: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना।

0: तो प्रेरणा, ये था हमारा एक खास सेगमेंट PMEGP पर, जहां हमने जाना कि कैसे एक अच्छा विचार और सही मार्गदर्शन किसी के सपनों को रोजगार में बदल सकता है।
1: लेकिन दोस्तों, दुनिया सिर्फ उम्मीदों और उपलब्धियों की कहानियों से नहीं बनी, इसके कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनकी गुत्थियां आज तक सुलझ नहीं पाई हैं। और अब वक्त है हमारे

0: अगले सेगमेंट मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड का,
1: जहां हम बात कर रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक, जैक द रिपर की। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो कौन था, असली सवाल ये है कि आखिर वो पकड़ा क्यों नहीं गया।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये कोई एक हत्या का मामला नहीं था। वर्ष 1888 में लंदन के व्हाइटचैपल इलाके में लगातार कई हत्याएं हुईं। पूरा शहर दहशत में था। अखबार हर दिन नई खबरें छाप रहे थे और पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना हुआ था और किसी भी तरह वो हत्यारे को पकड़ लें।

0: पूरा शहर दहशत में था। अखबार हर दिन नई खबरें छाप रहे थे और पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना हुआ था और किसी भी तरह वो हत्यारे को पकड़ लें।
1: उस समय की पुलिस ने अपने हिसाब से हर संभव कोशिश की। हजारों लोगों से पूछताछ की गई, इलाके में रात भर गश्त बढ़ाई गई, संदिग्ध लोगों की निगरानी की गई और यहाँ तक कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई।
0: लेकिन समस्या ये थी कि 1888 में ना तो सीसीटीवी कैमरे थे, ना डीएनए टेस्टिंग थी, ना फिंगरप्रिंट डेटाबेस और ना ही आधुनिक फॉरेंसिक साइंस। अगर अपराधी कोई हथियार छोड़कर नहीं जाता था या कोई गवाह नहीं होता था तो उसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता था।
1: और जैक द रिपर शायद इसी कमजोरी को समझता था। माना जाता है कि वो रात के अंधेरे में ऐसे इलाकों को चुनता था जहां रोशनी कम होती थी, गलियां संकरी होती थी और पुलिस की मौजूदगी सीमित होती थी।
0: इतिहासकारों का मानना है कि उसे व्हाइट चैपल इलाके की बहुत अच्छी जानकारी थी। उसे पता था कि कौन सी गली कहाँ जाती है, पुलिस की गश्त किस समय होती है और भीड़ से कैसे गायब होना है।
1: एक और दिलचस्प बात है कि उसकी कई वारदातों में हत्या और पुलिस के पहुंचने के बीच बहुत कम समय का अंतर था, यानी वो अपराध करने के बाद मिनटों में ही वहां से निकल जाता था। इससे कई विशेषज्ञों को लगता है कि वो बेहद शांत दिमाग और योजनाबद्ध तरीके से काम करता था।
0: कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जैक द रिपर इसलिए भी नहीं पकड़ा गया क्योंकि वह दिखने में बिल्कुल आम आदमी जैसा हो सकता था। लोग अक्सर किसी खतरनाक अपराधी की एक खास तस्वीर दिमाग में बनाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल सामान्य दिखाई देता हो।
1: जांच के दौरान पुलिस के पास 100 से ज्यादा संदिग्धों के नाम आए। किसी ने डॉक्टर पर शक किया, किसी ने कसाई पर, किसी ने नाविक पर और कुछ लोगों ने तो बड़े राजनीतिक और शाही परिवार से जुड़े नाम भी सामने रखे, लेकिन किसी के खिलाफ ऐसा सबूत नहीं मिला जो अदालत में टिक सके।
0: एक और वजह थी उस दौर की मीडिया। अखबारों में रोज नई नई अफवाहें छप रही थी, पुलिस को हजारों चिट्ठियां मिल रही थी जिनमें से कई लोग खुद को जैक द रिपर बता रहे थे और असली सुराग और झूठी जानकारियों में फर्क करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था।
1: फिर अचानक नवंबर 1888 के बाद हत्याएं बंद हो गई और यहीं से रहस्य और गहरा हो गया। क्या हत्यारा मर गया? क्या वह किसी दूसरे शहर या देश चला गया? क्या उसे किसी और अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया या उसने बस रुकने का फैसला कर लिया? किसी को नहीं पता।
0: आज भी अपराध विज्ञान के छात्र इस केस को पढ़ते हैं क्योंकि यह दिखाता है कि एक अपराधी कैसे उस दौर की जांच व्यवस्था की कमियों का फायदा उठा सकता था। जैक द रिपर केस पर आज तक 2000 से ज्यादा किताबें और रिसर्च पेपर्स लिखे जा चुके हैं। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया अनसॉल्व क्रिमिनल केस माना जाता है।
1: लेकिन दोस्तों, जब लोग जैक द रिपर को सबसे स्मार्ट किलर कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कोई जीनियस था। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे समय में सक्रिय था जब पुलिस के पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी और उसने परिस्थितियों का फायदा उठाया।
0: अगर वही अपराध आज के दौर में होता तो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट्स और डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से उसके बच निकलने की संभावना बहुत ज्यादा कम होती।
1: फिर भी 130 साल बाद भी उसकी असली पहचान एक रहस्य बनी हुई है। शायद इसी वजह से जैक द रिपर सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि इतिहास का सबसे चर्चित अनसुलझा रहस्य बन गया। एक ऐसा हत्यारा जिसे पूरी दुनिया जानती है लेकिन जिसकी असली पहचान आज तक कोई नहीं जान पाया।

0: सोचिए प्रेरणा, एक ऐसा रहस्य जो एक सदी से भी ज़्यादा समय बाद भी रहस्य बना हुआ है। जैक द रिपर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहीं ख़त्म हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी शाम का सफ़र अब भी बाकी है।
1: अब अगर रहस्यों की धुन से बाहर निकलकर मन करे थोड़ी ताज़ी हवा, खूबसूरत नज़ारों और सुकून भरे सफ़र का, तो बैकपैक करने की ज़रूरत नहीं है,
0: क्योंकि अब खुल रही है हमारी ट्रैवल डायरीज, जहां हम आपको ले चल रहे हैं दक्षिण भारत की एक ऐसी जगह जहां प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास, अध्यात्म और शानदार नज़ारे एक साथ देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं चामुंडी हिल्स की।
1: दोस्तों, अगर आप कभी मैसूर गए हैं तो आपने दूर से एक ऊंची पहाड़ी ज़रूर देखी होगी। यही है चामुंडी हिल्स, जो मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है और समुद्र तल से करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर है।
0: इस पहाड़ी का नाम देवी चामुंडेश्वरी के नाम पर पड़ा है। मान्यता है कि देवी चामुंडेश्वरी ने यहीं पर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी वजह से मैसूर का नाम भी महिषूर या महिषासुर से जुड़ा माना जाता है।
1: और यही कारण है कि चामुंडी हिल्स सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान भी है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित चामुंडेश्वरी टेम्पल हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर अपनी खूबसूरत द्रविड़ शैली की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।
0: लेकिन यहाँ सिर्फ मंदिर ही खास नहीं है, पहाड़ी पर चढ़ते समय आपको एक विशाल नंदी स्टैचू भी देखने को मिलता है। ये भारत की सबसे बड़ी एकाश्म यानी एक ही पत्थर से बनी नंदी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। इसे देखने के लिए पर्यटक खास तौर पर रुकते हैं।
1: और अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो चामुंडी हिल्स आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पहाड़ी की चोटी से पूरा मैसूर शहर दिखाई देता है। खासकर शाम के समय जब शहर की लाइट्स जलती है तो नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है।
0: अब सवाल ये है कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?
1: अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे बढ़िया माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और पहाड़ी की हरियाली भी देखने लायक होती है, तो बहुत ही ग्रीनरी वहाँ आपको देखने को मिलेगी। पर अगर आप अभी गर्मियों में जाना चाह रहे हैं तो सुबह जल्दी या शाम के समय जाना बेहतर होगा।
0: और अगर आप मैसूर के मशहूर मैसूरू दशहरा के दौरान यहाँ जाते हैं तो अनुभव और भी खास हो जाता है। पूरे शहर में उत्सव का माहौल होता है और चामुंडी हिल्स का धार्मिक महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है।
1: दोस्तों, यहाँ पहुँचना भी काफ़ी आसान है। मैसूर शहर से टैक्सी, बस या निजी वाहन से सीधे पहाड़ी तक जाया जा सकता है। जो लोग थोड़ा एडवेंचर पसंद करते हैं वे लगभग 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं।
0: तो अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ आध्यात्म, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता और शानदार व्यू सब कुछ एक साथ मिले तो चामुंडी हिल्स आपकी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। अगली बार जब आपका सफ़र कर्नाटक की ओर हो तो मैसूर के इस खूबसूरत पहाड़ी सफ़र को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।
1: तो बैग पैक कीजिए, कैमरा तैयार रखिए और निकल पड़िए एक ऐसे सफ़र पर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: तो चामुंडी हिल्स की खूबसूरत वादियों से लौटकर मन तो कर रहा है कि ये सफर यूं ही चलता रहे,
2: लेकिन अब वक्त है थोड़ा ग्लैमर, थोड़ी चमक दमक और हॉलीवुड की रंगीन दुनिया में कदम रखने का, क्योंकि हमारे अगले सेगमेंट में बात होगी उन सितारों की जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया भर के दर्शकों के दिलों पर राज किया।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी प्रतिभा, बुद्धिमता और वर्सेटाइल नेचर से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फेमस अभिनेत्री नैटली पोर्टमैन की।
2: दोस्तों 9 जून 1981 को इसराइल की राजधानी जेरूसलेम में जन्मी नैटली पोर्टमैन का मूल नाम नैटली हर्शलाग है। उन्होंने बहुत कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और उनकी पहली प्रमुख फिल्म लियोन द प्रोफेशनल से ही दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया।
1: इसके बाद उन्होंने स्टार वॉर्स प्रीक्वल ट्रायोलॉजी, वी फॉर वेंडेटा, ब्लैक स्वान, जैकी और थॉर जैसी चर्चित फिल्मों में शानदार अभिनय किया।
2: फिल्म ब्लैक स्वान में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर्स ड्रामा, बाफ्टा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं।
1: इसके अलावा अपने करियर में नैटली पोर्टमैन को 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, 1 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड और 1 एकेडमी अवार्ड जो कि एक ऑस्कर है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है।
2: दोस्तों अभिनय के साथ साथ नैटली शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट रही हैं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, यही कारण है कि वे प्रतिभा और विद्वत्ता का अनूठा संगम मानी जाती है।
1: उनकी सफलता यह साबित करती है कि कला और शिक्षा दोनों को साथ लेकर भी ऊंचाइयों तक पहुँचा जा सकता है।
2: बिल्कुल वंदना, और जब बात अभिनय की दुनिया में उत्कृष्टता की हो तो कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज और यादगार किरदारों से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है।
1: ऐसे ही कलाकार हैं जिनके निभाए गए किरदार आज भी सिनेमा प्रेमियों की यादों में जिंदा हैं।
2: फिल्मी दुनिया से जिस कलाकार की हम बात कर रहे हैं वे केवल अभिनय नहीं करते हैं बल्कि अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं, और ऐसे ही वर्सेटाइल नेचर के धनी अभिनेता हैं जॉनी डेप।
1: 9 जून 1963 को ओवेंस बोरो में जन्मे जॉनी डेप हॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और बहुआयामी अभिनेताओं में से गिने जाते हैं। अपने अनोखे अभिनय अंदाज और अलग अलग तरह के किरदारों को जीवित बनाने की क्षमता के कारण उन्हें विश्वभर में लाखों प्रशंसक बनाए गए हैं।
2: जॉनी डेप को सबसे अधिक लोकप्रियता पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज में निभाए गए कैप्टन जैक स्पेरो के किरदार से मिली। उनका यह किरदार सिनेमा इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में शामिल माना जाता है।
1: उन्होंने एडवर्ड सिजरहैंड्स, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, फाइंडिंग नेवरलैंड और स्वीनी टॉड द डीमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट जैसी फिल्मों में भी यादगार अभिनय किया है।
2: और उनके पुरस्कारों की बात की जाए तो जॉनी डेप को गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा उन्हें 3 बार अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर, 2 बार बाफ्टा अवार्ड और कई बार स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया। वर्ष 1999 में उन्हें सेजर हॉर्नरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया जो फ्रांसीसी सिनेमा का एक प्रतिष्ठित सम्मान है।
1: वर्ष 2012 में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले अभिनेताओं में भी दर्ज किया गया। अभिनय के साथ साथ वे निर्माता और संगीतकार के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं।
2: दोस्तों संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपनी कला के प्रति समर्पण बनाए रखा और हर बार नए किरदारों के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित भी किया।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वंदना, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ इतिहास बनाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो परंपराओं को चुनौती देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते तैयार करते हैं। और एक ऐसी ही प्रेरणादायक शख्सियत है किरण बेदी।
4: सही कहा प्रेरणा। 9 जून 1949 को पंजाब के अमृतसर में जन्मी किरण बेदी भारत की पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी बनी। वर्ष 1972 में IPS में चयनित होकर उन्होंने इस दौर में एक नई मिसाल कायम की, जब पुलिस सेवा में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम थी।
3: किरण बेदी ने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण और जेल सुधार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। विशेष रूप से तिहाड़ जेल में किए गए उनके सुधारों की चर्चा आज भी होती है, जहां उन्होंने कैदियों के पुनर्वास और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया।
4: उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए, जैसे कि वर्ष 1994 में उन्हें प्रतिष्ठित रेमोन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक भी सम्मानित किया गया है 1979 में।
3: और दोस्तों, वर्ष 2003 की बात की जाए तो वर्ष 2003 में बेदी संयुक्त राष्ट्र पुलिस की प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान विभाग में पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और पहली महिला बनी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि किरण बेदी एक उत्कृष्ट टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की और खेल के साथ साथ शिक्षा में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
4: सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने सामाजिक कार्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और जन जागरण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। वे पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं।
3: दोस्तों, इनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी बाधा को अवसर में बदला जा सकता है।

0: हंगामा।
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध आंदोलनों तक सीमित नहीं है। इस इतिहास में ऐसे अनेक वीरों का योगदान है जिन्होंने जंगलों, पहाड़ों और गांवों से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। ऐसे ही महान जननायक थे बिरसा मुंडा।
2: दोस्तों, 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड में जन्मे बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और जननायक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ आदिवासी समुदाय को संगठित किया।
1: 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उन्होंने उल गुलान अर्थात महान जनक्रांति का नेतृत्व किया। उनका आंदोलन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक जागरण, आत्मसम्मान और आदिवासी अधिकारों की रक्षा का भी अभियान था।
2: बिरसा मुंडा ने लोगों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। यही कारण है कि उन्हें आज भी आदिवासी समाज श्रद्धा से धरती आबा यानी धरती पिता के नाम से याद करते हैं।
1: अंग्रेजी शासन ने उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मात्र 25 वर्ष की आयु में 9 जून 1900 को रांची की जेल में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।
2: दोस्तों, उनके सम्मान में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण संस्थानों, योजनाओं और स्मारकों का नाम

0: करण किया है। वर्ष 2021 में 21 से 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनके अद्वितीय योगदान को सम्मान देने का प्रतीक है।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अपने अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए जागरूकता, साहस और एकता कितनी आवश्यक है।
0: दोस्तों, जो लोग अपने लोगों के लिए जीते हैं, वे कभी इतिहास से नहीं मिटते। संघर्ष भले समाप्त हो जाए, लेकिन उनके विचार सदैव प्रेरणा देते रहते हैं।
1: सही कहा। और प्रेरणा इसी के साथ, कुछ लोग अपने संघर्षों से इतिहास रचते हैं, तो कुछ अपनी रचनात्मकता से संस्कृति और सभ्यता को नई पहचान देते हैं। समय बीत जाता है, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती है।
0: और एक ऐसी ही अमर विरासत छोड़ने वाले कलाकार थे, जिन्होंने रंगों और रेखाओं के माध्यम से भारत की आत्मा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया।
1: रंग जब कैनवास पर उतरते हैं, तो केवल चित्र नहीं बनाते, बल्कि एक पूरी कहानी कह जाते हैं।
0: भारतीय कला जगत में एक ऐसा ही नाम है, जिसने अपनी कूची के रंगों से विश्व भर में भारत की पहचान बनाई। मकबूल फिदा हुसैन।
1: 17 सितंबर 1915 को पंधरपुर में जन्मे एमएफ हुसैन आधुनिक भारतीय चित्रकला के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्हें अक्सर भारत का पिकासो भी कहा जाता है।
0: अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने मुंबई की सड़कों पर फिल्मी पोस्टर और होर्डिंग्स बनाकर काम शुरू किया, लेकिन उनकी प्रतिभा और कल्पनाशीलता ने जल्द ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनकी पेंटिंग्स में भारतीय संस्कृति, इतिहास, लोक कथाएं, घोड़े, नारी शक्ति और सामाजिक विषयों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है।
1: एमएफ हुसैन केवल चित्रकार ही नहीं, बल्कि फिल्म निर्देशक भी थे। उनकी फिल्म थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: दोस्तों, उनके कला क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1966 में पद्मश्री, वर्ष 1973 में पद्म भूषण और वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे।
1: उनकी कलाकृतियां विश्व के अनेक प्रतिष्ठित संग्रहालयों और कला दीर्घाओं में प्रदर्शित की गई है। उनकी रचनात्मकता ने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयां प्रदान की।
0: 9 जून 2011 को लंदन में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी बनाई हुई कलाकृतियां आज भी कला प्रेमियों और युवा कलाकारों को प्रेरित कर रही हैं।
1: एम एफ हुसैन का जीवन हमें सिखाता है कि कला केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी है।

0: दोस्तों, इतिहास केवल बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने का माध्यम भी होता है। आइए जानते हैं 9 जून के इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
1: सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 1752 की। इसी दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने प्रसिद्ध पतंग प्रयोग के माध्यम से यह सिद्ध किया कि बिजली और आकाशीय तड़ित की एक प्रकृति है। इस प्रयोग ने विद्युत विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।
0: दोस्तों, वर्ष 1934 की बात करें तो वर्ष 1934 में दुनिया के लोकप्रिय कार्टून पात्र डोनाल्ड डक ने पहली बार फिल्म द वाइस लिटिल हैन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज डोनाल्ड डक विश्व के सबसे प्रसिद्ध एनिमेटेड पात्रों में से एक है।
1: आज के दिन वर्ष 1986 में इटली में राजशाही का औपचारिक अंत हुआ और देश को गणराज्य घोषित किया गया। यह इटली के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है।
0: वर्ष 1967 में इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच लड़ा गया ऐतिहासिक सिक्स डे वॉर समाप्त हुआ। यह संघर्ष मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है।
1: इतिहास हमें यह सिखाता है कि विज्ञान की खोज हो, स्वतंत्रता का संघर्ष हो या सामाजिक परिवर्तन, हर उपलब्धि के पीछे साहस, जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प की शक्ति होती है।
0: और दोस्तों, अब चलते हैं खेल जगत की खबरों की ओर और बात करते हैं मेंस क्रिकेट की। भारत ए ने श्रीलंका के दाम्बुला में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज में श्रीलंका ए के खिलाफ 278 रनों का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, गौरतलब है कि भारतीय ए टीम का अगला मुकाबला गुरुवार को इसी मैदान पर अफगानिस्तान ए टीम से होगा।
1: अब ले चलते हैं आपको शेयर मार्केट की ओर। सबसे पहले बात करते हैं एनएसई की। तो एनएसई आज 23,242.10 पॉइंट्स पर बंद हुआ 119.10 की बढ़त के साथ। वहीं बीएसई आज 73,918.76 पॉइंट्स पर बंद हुआ 394.50 की बढ़त के साथ। और एक डॉलर की कीमत आज मार्केट में 95.38 रुपीस देखने को मिली।
0: और इसी के साथ आपसे कहेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही वादा है आपसे। मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए मैं प्रेरणा
1: और मैं वंदना,
0: नमस्कार।

कार्यक्रम युववाणी अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण हम करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा

0: तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। नमस्कार दोस्तों, आज की शाम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति। और आज की ये शाम जो है समर्पित है बॉलीवुड की उस अभिनेत्री के नाम जिन्होंने अपनी मुस्कान, मासूमियत और शानदार अभिनय से लाखों दिलों में जगह बनाई, अमीषा पटेल। जी हाँ, आज ही के दिन इनका जन्म यानी कि 9 जून 1975 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार से की थी। तो सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

कुमार सानू और अलका याग्निक की खूबसूरत आवाज़ों को अभी आपने सुना। फिल्म थी कहो ना प्यार है और हम बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की। तो दोस्तों साल 2000 में आई कहो ना प्यार है ने अमीषा पटेल को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म में उनकी और ऋतिक रोशन की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और हम बात कर रहे थे अमीषा पटेल की, जिनका आज जन्मदिन है। तो हम आपको बता दें कि साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा में अमीषा ने सकीना का किरदार निभाया था, जो आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार किरदारों में गिना जाता है। इस फिल्म ने उन्हें कई नई पहचान भी दी थी। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: já pode ver.
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए वरना घर आ जाएंगे.
1: क्यों लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
1: डिजिटल अरेस्ट
2: 1,00,000 बच जाओगे.
1: इतने पैसे.
2: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा.
1: जेल तो तुम जाओगे. तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता. ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस बैंक RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
3: हेलो मम्मा.
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए.
6: तुमसा कोई दूसरा इस समी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी. तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत.

कुछ चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कुछ मुस्कानें हमेशा यादों में बसी रहती है। अमीषा पटेल उन्हीं मुस्कानों में से एक है। दोस्तों, अमीषा पटेल ने हमराज, भूल भुलैया, गदर और कहो ना प्यार जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। जन्मदिन के इस मौके पर अमीषा पटेल को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनकी जिंदगी हमेशा खुशियों, सफलता और मुस्कुराहटों से भरी रहे, यही दुआ करते हैं। और सुनते हैं ये आखिरी गीत।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब जुड़ते हैं जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के सुचारू परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये अधिनियम 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे इसका कम हो जाए।

0: उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही, पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीआई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के खोनागोरियान क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। हादसे के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति अधिक भयावह हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया, और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने एसएमएस और जेएनयू अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
1: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भरे गए सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों ने ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी विधानसभा में जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी और भाजपा की अलका सिंह तथा सतीश पूनिया के पर्चों की जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में की गई। जांच के साथ ही इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। यहां 19 विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राज्यपाल आज लोकभवन में कर्नाटक के आईआईटी धारवाड़ के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान के महापुरुषों और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताया। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि इसमें युवाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए बीकानेर भेजी गई है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने आज जयपुर में बैठक कर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री खींसर ने कहा कि बीकानेर का ये मामला कोटा प्रसूता प्रकरण जैसा नहीं है।

0: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर थी।
1: गौरतलब है कि बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। वहीं गंभीर हालत वाली एक महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 800 से अधिक बुजुर्गों को ये उपकरण दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले साल नवंबर महीने में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद उनकी जरूरत के आधार पर 85 लाख रुपए मूल्य के ये उपकरण तैयार कराए गए। देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने आज जयपुर में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये कार्यशाला रखी गई। श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में 9% से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल देखने को मिला है। श्री कुमार ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से उपजी नई संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
2: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसायिक निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
1: सरकारी ई मार्केट पैलेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जेम में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या लगभग 2300 थी, जो अब बढ़कर 12 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जेम पर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़कर अब 2,16,000 से अधिक हो गई है। साथ ही महिला उद्यमियों की ओर से की जा रही खरीद का आंकड़ा 93,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने फाइल निस्तारण प्रक्रिया को और बेहतर तथा उत्तरदायी बनाने की बात कही। मुख्य सचिव आज विभिन्न समितियों के सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देश भर में कई आयोजन हुए। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती है। साथ ही विस्तारित अभियान के तहत 18 और 27 तारीख को ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष ट्रैकिंग और निगरानी की जाती है। इस मौके पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबीजी राम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूति

0: उपभोक्ताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बीच जिले भर में जगह जगह योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का काम जारी है। मौसम की परवाह किए बिना प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चारभुजा तहसील क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रूपनगर गांव में सर्वे दल 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। इस दौरान 7 घंटे में 60 मकानों का सूचीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील के बाद से जिले में ईंधन बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए एक ही बस में सवार होकर दफ्तर तक का सफर तय किया। चारभुजा में आयोजित संध्या चौपाल में भी दोनों अधिकारी बस से ही गए। लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा है और प्रेरणा ली है। न्यायिक अधिकारियों ने भी पैदल चलने, साइकिल का उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की है। कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने साइकिल पर शहर में गश्त की और ईंधन बचाने का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में बरसात का पानी इकट्ठा करने और पानी बचाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। बनास नदी और गणगौर घाट पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों, गौशालाओं और जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। जल पूजन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। अभियान के तहत मॉनसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और जिले में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए गए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजसमंद में रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन रखी गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पौधे लगाए गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष सतर्कता देखी गई। जागरूकता अभियान चलाकर राजसमंद पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जिला पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को कहा है कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रहीं। उन्होंने सांगठ कला गांव में 67 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास की शुरुआत के साथ ही विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में रोजाना भगवान का विशेष श्रृंगार और मनोरथ हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को खास झांकियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। फूल मंडली, जल विहार, रथ यात्रा और नौका विहार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजी रातेत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल में जापा वाली लुगाइयां री तबियत बिगड़ बारा मामला में रपट मांगी। और देश दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर बधर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मनरेगा योजनाओं विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी माए बदलाव सारू केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशों बाबत 95,692 करोड़ रुपया रा अंतरिम बजट रो प्रस्ताव किन्नो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में राज्य और केंद्र राजवाड़ा प्रदेशों रा ग्रामीण विकास मंत्रियों संग वर्चुअल मीटिंग में ओ ऐलान किन्नो। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री चौहान कहो कि किणी राज्य रा बजट आवंटन में कोई कमी नहीं करी ची है बल्कि लारला साल री तुलना में बजट 40% बधाई जियो है।
2: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: वीबीजी रामजी कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रा मुख्यालय रो दौरा कर 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे कहो कि परीक्षा साफ कोई सागे करावण और इनरी गोपनीयता बनाई रखण सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि इन दौरान आवन वाली अड़चना रो सामो करण सारू खुफिया तंत्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत सगला साइबर सुरक्षा संसाधन काम लिया जा रहा है।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए लाई लाग जावणु 3 मजूरा री मौत वेगी और 5 मजूर घना दाज गया। जख्मी मजूरा ने जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रिहायशी हलका माए गैर कानूनी तौर चाल रहा ई कारखाना माए हादसारी बगत महिलावां और बच्चा समेत 8 जना मौजूद हा। लाई लाग्या पाछे वेठे राखी जी गैस री टंकी फाटगी। हादसा री जानकारी मिलता ही सिविल डिफेंस री टीम मौके पुगी और दमकल री मदद आग बुझाई जी। थाना अधिकारी ओम प्रकाश बतायो कि लाई लागण रा कारणा री जांच करी जा रही है।
4: हमें सूचना मिली है कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
1: प्रदेश और राज्यसभा री 3 सीटा में थे चुनाव सारू उम्मीदवारा का नियम दाखिल करी जिया सगला 9 नाम पाना आज विधानसभा में करी जी जांच में सही मिलिया।

0: द्विवार्षिक चुनाव सारू राज्यों तीन उम्मीदवार पर्चा दाखिल की ना हा। आम आए दो भाजपा रा और एक कांग्रेस रो उम्मीदवार है। चुनाव अहलकार भारत भूषण शर्मा बतायो कि तीन उम्मीदवार कांग्रेस रा नीरज डांगी और भाजपा रा डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पूनिया रा पर्चा री जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन री मौजूदगी माए कराई ची। जांच रा काम रो वीडियो ही बनाई चियो। नाम पाछा लेवन री काल आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो है कि जूना जमाना उई भारत भणाई लिखाई रो केंद्र रहो है। वे आज लोकभवन माए कर्नाटक माए धारवाड़ रा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रा विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान बोल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत रा तेत विद्यार्थियों सागे मुलाकात रे दौरान राज्यपाल राजस्थान रा महापुरुषा और ऐतिहासिक स्मारका रो जिक्र ही कीनो। नवी शिक्षा नीति रो जिक्रो करता थका श्री बागड़े कहो कि इन माए नौजवाना ने हर हलका माए अगाड़ी बनावण माथे जोर दियो चियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज भरतपुर और डीग जिला रा आला अहलकारा सागे मीटिंग कर और वठे विकास रा कामा रे बारा माए चर्चा कीनी और जरूरी हुक्म दीना। मुख्यमंत्री डीग जिला रा श्रीनाथ जी मिंदर माए जातरुआ सागे बातचीत कीनी और सुबीता रे बारा माए जानकारी लीनी। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण रा अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ही मौजूद हा। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। बीकानेर रा पीबीएम सफाखाना माए ऑपरेशन भिया जापा पाछे छह लुगाइया री तबियत खराब है जावन रा मामला माए चिकित्सा विभाग मेडिकल कॉलेज रा प्रिंसिपल रपट मांगी है। इस आगे जूतपुर मेडिकल कॉलेज उई जानकारा री टीम जांच सारू बीकानेर भेजी जी है। इन बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग कर और मामला री जानकारी लीनी और अड़ा वाकया रोकण सारू सगला जरूरी जतन करण बाबत कहो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका खींवसर कहो कि बीकानेर रो ओ मामलो कोटा माए लाडला दिनाभिया मामला सरीखो नी है।
1: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज है। दो पेशेंट जब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर।
0: ध्यान जोग है कि बीकानेर माए ऑपरेशन उफिया जापा पाछे छह लुगाइयां री किडनी माथे असर पड़वारी जानकारी मिली है, जदके घणी मंदी एक लुगाई ने वेंटिलेटर माथे राखी ची है। चित्तौड़गढ़ माए राष्ट्रीय वयोश्री योजना रा तहत आज बुजुर्गों ने जिंदगी आसान बनावण माए मददगार साजो सामान दिया चिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत 832 बुजुर्गों ने ए उपकरण दीना। वे बतायो कई सारू लारला साल नवंबर महीना माए खास शिविर लगार पात्र लोगों ने पिछाण करी जी, चिंपा छे वानी जरूरत रे मुताबिक 85 लाख रुपया मोल रा उपकरण तैयार कराई चिया। भारत रा सामान री दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर बधर 863 अरब डॉलर ताई पूग की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा वाणिज्य विभाग माए संयुक्त सचिव साकेत कुमार आज जयपुर माए आ जानकारी दीनी। केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा फेवन रा सिलसिला माए राखी जी एक कार्यशाला माए श्री कुमार कहो कि ई मियाद माए सेवा हलकाओं जुड़ी बिक्री माए 9% बत्ती बढ़ोतरी दर्ज करी जी। श्री कुमार न्यारा न्यारा दिशा सागे करी जिया मुक्त व्यापार करार उपजी नवी संभावनावां रा बारा माए जानकारी दीनी। वह कहो कि इनू भारत उन दिशावर माए सेवा और माल बेचन वाला ने बेहतर मौका मिल रहा है।
2: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम रेजरिया

0: खरीद बिक्री करण वाला सूक्ष्म लघु उद्यमारी तादाद साल 2016-17 रा करीब 2300 बधर अब 12 लाख वे की है। जेमरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार आज नई दिल्ली माए खबर नवीसा ने आ जानकारी दीनी। वे कहो कि जैम माथे महिलाओं वाला मालिकाना हक वाला उद्यमारी तादाद ये बेधर अब 2,16,000 न पार कर की है और महिला उद्यमियों का न्यू खरीदी 93,000 करोड़ रुपया लेवल न पार कर की है। और अब मौसम प्रदेश माए तेज गर्मी और उमस रो असर बतकियो है। आज श्रीगंगानगर बीकानेर और जैसलमेर समेत कई ठोणा पारो 44 डिग्री सेल्सियस न पार कर क्यों। बाड़मेर चूरू कोटा जोधपुर और जयपुर में जोरदार गर्मी रही। इन बीच मौसम विभाग आज प्रदेश रा 7 जिला में अंधड़ बरसात और 5 जिला में लू बजन सारू चेतायो है। 11 जून नु राज्य रा कई हलका में ओजू आंधी बारिश वेवन रा आसार है। अहमदाबाद में राखी जी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस री सिपाही देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस होड़ री व्यक्तिगत श्रेणी में सोना रो तमगो हासिल किन्नो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाने आ उपलब्धि हासिल करण सारू बधाई और शुभकामनावां दीनी। राज्यपाल मारा बधाई संदेश में ई होड़ ने भारत री संस्कृति में जुड़िया योग खेलां ने दुनिया री स्वीकृति बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून न विचार बतावेला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 मथ 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो VBG रामजीरा तेज किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव माए कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून न ओजू ली जावन वाले NEET UG परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा PBM अस्पताल माए जापा वाली लुगाइयां री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। हर देश हूँ दिसावर माए बिक्री लाडला 12 साल माए $468 अरब उम्बैधर $863 अरब ताई पोगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती बाड़ी से जुड़ा कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नीता भाईसा,
1: राम राम उपासना भाईसा,
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला सगला ही जना ने भी अपन राम राम सा भाई। कार्यक्रम रमाई ने देखो बढ़िया बढ़िया सी जानकारियां है, तो भाई देखो सब जना कार्यक्रम होने वास्ते तैयार है, तो आप ही भी बढ़िया बढ़िया सी जानकारी देवाने और बढ़िया बढ़िया सा गीत होने तैयार हाँ सा।
1: बिल्कुल सा।
0: तो भाई कार्यक्रम की शुरुआत करा और सबो पहली आप ही बतावा दलहनी फसलारो महत्व।
1: देखो सा, दलहनी फसलें आप सब जाना कि खेती बाड़ी में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि और मानव स्वास्थ्य में दलहनी फसला रो खूब सारो महत्व है।
0: हाँ सा,
1: क्योंकि अपनो देश जो है दाला रो सब बड़ो उत्पादक उपभोक्ता और आयातक है। दाला नहीं केवल देखो शाकाहारी आबादी वास्ते प्रोटीन रो खास स्रोत है, बल्कि देखो यो मिट्टी री उर्वरता बनावर वास्ते भी बहुत अच्छो भूमिका वन में निभाए सा।
0: हाँ जी बात है साहब। भाई देखो दलहनी फसलारी जी जड़ा है वणारे महीने राइजोबियम नाम रो जीवाणु पायो जावे और यो जीवाणु जो है वायुमंडल री नाइट्रोजन ने सोख लेवे और पछे मिट्टी में वने स्थिर कर देवे। जण्यू कहीवे कि खेत ने प्राकृतिक रूप में नाइट्रोजन मिलती रहे और रासायनिक खादा पे निर्भरता कम वही जावे।
1: बढ़िया बात बताई सा। और अना फसलों देखो गहरी जड़ा रेवे अनारी जो कि मिट्टी री जा संरचना है वन में सुधार है और जल धारण क्षमता जो है बने बढ़े सा।
0: हाँ सा, देखो दलहनी फसला आपने मनुष्य रे लिए भी बहुत ही बढ़िया पोषण देवे है। शाकाहारी भोजन में आप ये बात करा अगर दाला जो है वणों प्रोटीन जो है वो सबों बड़ी ज़्यादा मात्रा में मिले है और यो देखो सस्तो भी वे।

0: निवासित मैंगो नहीं वे तो हर एक व्यक्ति ने आसानी उपलब्ध वे सके है।
1: और देखो अनेरे महीने कार्बोहाइड्रेट फाइबर विटामिन विशेषकर आप देखा तो विटामिन बी और खनिज जैसा जी लौह तत्व आयरन और जिंक ई सब जो है वत्ती मात्रा में मिले सा।
0: हाँ सा देखो ये सब जो चीजा है ये कुपोषण ने दूर करे और खास तौर बच्चा ने और गर्भवती महिला रे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी वे है।
1: दलहनी फसला में देखो ई कम पानी में कम लागत में उपजावे और अणी में जो है सूखा सहन करवारी क्षमता भी वे ज़्यादातर जो दलहनी फसला है जिसरे कि अरहर चना मूंग ई सब जो है भी कम पानी में हाउ पैदावार किसान भाई ने मिल जावे
0: हाँ
1: अणा।
0: सा देखो अणा ने बहुत ज्यादा सिंचाई री या महंगा कीटनाशक री भी जरूरत नहीं वेवे जानियो के ये खेतारी लागत भी कम आवे और दलहनी फसला जो है भी फसल चक्र और मिश्रित खेती रे लिए भी बहुत अच्छी रेवे है। अणा दलहनी फसला री बात करा तो अणा रे मुकाबले अगर दूसरी मुख्य फसला जिस तरह की गेहूं है मक्का है अणा रे हाथे आप अणा री वावणी भी कर सका तो कई वे वणियों फसल चक्र जो है वो आसानी वापी बनाई सका।
1: आप सब जाना कि देखो भाई फसल चक्र अपना मांगा जदी जो है अपने खेत महीने जो है मिट्टी री उर्वरा शक्ति बनी तकी रहेगा और फसल चक्र अपना मांग कहिए एक ही फसल अगर खेत में वावनी करांगा तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है भी कम वे जाएगा और उत्पादन भी कम वे तो दलहनी फसलारी देखो कटाई रे बाद बचे तक जो अवशेष है जिससे कि भूसो और हरी पत्तियां मवेशिया रे वास्ते ही बहुत पौष्टिक और प्रोटीन युक्त चारों वने जने दूध उत्पादन में भी वृद्धि वैसा।
0: तो भाई देखो आप ही यूँ कह सका कि फसल चक्र ने बढ़ावा में दलहनी फसला रो बहुत बड़ो हाथ रेवे है। तो वणियों कहिए देखो अगर किसान भाई जो है वे दलहनी फसला लेवेगा तो कहिए देखो कम लागत में वणा ने बहुत अच्छा मुनाफा री और बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ा मिलती रहेगा। तो वणियों कहिए किसान भाई ने देखो भाई वणा रे घर परिवार में भी देखो घर परिवार में काम में भी लेगा तो वणा रे स्वास्थ्य में भी सुधार वेगा और आर्थिक स्थिति भी वणारी सुधरती जाएगा सा।
1: सही कह रहा हो सर। जटे स्वास्थ्य में सुधार री बात कह रहा हो तो देखो कार्यक्रम में आप जानकारी करावा गीत संगीत भी देखो ऊर्जावान बनाया रखे स्वास्थ्य में सुधार करे तो
0: हाँ सर
1: आपको तो चालना राजस्थानी गीत आड़ी और सुनामा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।
0: हाँ सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो नीता वैसा देखो तो बढ़िया सो अभी गीत हुनायो और हाथे हाथे संदेश भी हुनाया।

0: और अब कार्यक्रम रमाई ने अपनी अगली जानकारी जो है वह देखो मौसम संबंधी है सा।
1: बिल्कुल सा। और मौसम री जानकारी किसान भाई ने बेचा है तो भी वणी अनुसार काम करे तो देखो मेहनत बनारी बेकार नहीं जावे।
0: हाँ जी हाँ
1: तो
0: सा।
1: मौसम विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे अनुसार आवा वाला दना में अधिकतम तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस 34 से 37 डिग्री सेल्सियस रे बच्चे रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस रहवारी संभावना है। और देखो मौसम धूप वालों भी रहेगा साफ भी रहेगा लेकिन हल्की तापमान में गिरावट ला रहे गर्मियों थोड़ी राहत मिलवारी भी संभावना है। हवारी
0: हाँ
1: गति की
0: सर।
1: बात करा तो हवा खास रूप दक्षिण पश्चिम पश्चिम दिशा में 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा री गति चाल वारी संभावना है। नमी री बात करा तो 47 से 51% रे अड़े भड़े रह सके और आवा वाला 4 दिन तक बारिश री संभावना कम है ऐसा।
0: हाँ सा भाई देखो किसान भाई जो है भी देखो खेती बाड़ी रो काम करे तो भाई जैसे वो आप बताए हो बाहर की मौसम जो है वो सूखो रहेगा गर्म रहेगा तो आनी वास्ते आनी टाइम पे जो फसला है वहाँ में आगे री जो तैयारी है वह किसान भाई ने करनी है और खेता ने दुरुस्त कर लेना है और वंडे लिए यो बहुत ही अनुकूल समय है अबार तो भी कर सके और गहरी जुताई खेतारी भी जरूर कर लेवे ताकि कहिए कि धूप और साफ मौसम रो फायदो बनाने मिल जाएगा। गहरी जुताई करवाऊँ जो है जतरा भी हानिकारक कीट वगैरह है भी सब नष्ट भी जाएगा और मेड़बंदी और मिट्टी रो संरक्षण भी आपने कर लेना है क्योंकि देखो आवा वालों जो टेम है वो वर्का रो टेम आएगा तो वंडे वास्ते मेड़बंदी अबारुच कर लेवे मजबूत कर लेवे अगर वणी थे की है तो वणी मेड़बंदी ने मजबूत कर लेवे और ढलान वाला जो कोई भी क्षेत्र है वणा खेता में जल भराव ने रोकवा वास्ते और नमी बनाए रखवा वास्ते मेड़ और क्यारियाँ दुरुस्त कर लेवे।
1: सही कह रहा हो सर। और जिस तरह आप क्यों को भाई गहरी जुताई कर ले तो मिट्टी में छिपिया तका जी अंडा प्यूपा और खरपतवार रा बीजे भी तेज धूप रे कारण नष्ट हो जाएगा। अंडे लारे देखो जल प्रबंधन और बुनियादी जो ढांचा है वना रा रख रखाव भी आपने करना है। खेत है तलाई है अगर आपने अड़े बड़े फार्म पोंड है तो मानसून रे आगमन रे पहली वना री सफाई कर लेनी है। गाद ने निकालवारो काम भी कर लेना और सूखा मौसम में ये सब निपटाई लांगा ताकि आवा वाला जो वर्खा रो जल है वंडो ज्यादा संग्रह आपा कर सका सा।
0: अच्छा और देखो आनी टाइम पे एक काम और आप ही कर सका हाँ वो कि आपने देखो आप ही ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जो करा हाँ वंडा जत्री भी सिस्टम है वड़ा सिस्टम ने आपने जांच लेना है अगर कोई पाइप या नोजल ब्लॉक भी गयो है तो मैंने साफ कर लेना है ताकि वावणी रे बाद जीवन रक्षक सिंचाई में आपने कोई भी बाधा नहीं आवे।
1: लारिस देखो उन्नत बीज री व्यवस्था भी आपने कर लेनी है। बीज और किस्मा रो चयन भी आपने करनो है। जिस तरह की भाई खरीफ फसला री बात करा तो मक्को है जिस तरह प्रताप मक्का 3 और 5 माही कंचन माही धवल ज्वार री बात करा तो प्रताप ज्वार 14-30 CSV 15 मूंग री बात करा तो RMG 62 RMG 268 और उड़द री बात करा तो T9 ये सब जो है अपने उदयपुर संभाग रे लिए हाउ किस्मा है। प्रमाणित बीजारी व्यवस्था सरकारी समिति या पचे विश्वसनीय जो केंद्र है मनो पहले ही अपने कर लेनो चाहे सा।
0: अंडे हाथे हाथे आपने बीजोपचार की तैयारी भी कर लेनी है। देखो वावणी रे टाइम पे कवकनाशी और राइजोबियम PSB कल्चरों बीजोपचार करने पछे आपने वावणी री तैयारी कर लेनी है और शुरुआती अवस्था में देखो अगर अने बीजोपचार कर ला तो फफूंद जनित रोगों आप ही बचाई सका फसल ने।
1: कीड़ा और फसल सुरक्षा री बात करा तो देखो फेरोमोन ट्रैप अगर आप साग भाजी री शुरुआती फसला री तैयारी कर रहे हैं हाँ तो जैविक कीट नियंत्रण रे वास्ते खेता में लगावर वास्ते फेरोमोन ट्रैप और पीला चिपचिपा जो कार्ड है मनाने लाइने रख लेना है। मल्चिंग तकनीक भी आपने अपनानी है। अगर हनी टेम पे कोई कद्दू वर्गी या दूजी साग भाजी खेत में उभी तकी है तो तेज धूप नमियों बचावर वास्ते मल्चिंग यानी कि प्लास्टिक या सूखी घास अवशेष अपने उपयोग में लेना है सा।
0: तो नीता भाई सा देखो किसान भाई जो है हावचेत वही जाएगा और अणी मौसम रे अनुसार आप ही देखो अतरा सारा काम बताया वी सब काम कर लेगा तो आवा वाला समय में भी बहुत अच्छी फसल ले सकेगा सा।
1: लारेज देखो खेती बाड़ी लारे ढांडा चौपारो भी किसान भाई पालन कर रहा है तो वनारो भी वनाने ध्यान रखनो है। ढांडा चौपा पाल में लिया है तो अणी मौसम में देखो वना टीकाकरण कराना है खुरपका मुँहपका रोग है, मणारे बचावरा भी प्रबंध करना है, लारे वणा ने स्वच्छ ताजा दल उपलब्ध हो सके, ऐसा प्रबंध भी आप

0: तो बस ना भाई साहब, देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत आपा सुना है और जटे जानकारी री बात कर रहे हैं। हाँ तो देखो, सरकार भी कई योजना चलावे, वंडी जानकारी भी आपा किसान भाई ने देवा, ताकि कई भी योजना सरकार चलाए वंडो उद्देश्य यो ही जे कि भाई जमीनी स्तर पे योजना रो लाभ पहुंचे।
1: हाँ जी बात है
0: तो
1: साहब।
0: आज कई योजना लाया उसा।
1: भाई देखो, आज आप ही लाया हाँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है या भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, एक बहुत ही बढ़िया योजना है जो केंद्र प्रायोजित है। और झंडो उद्देश्य कृषि और वनों जुड़िया का क्षेत्र, जिस तरह की कृषि पशुपालन है, बागवानी है, अनारो समग्र विकास करना।
0: देखो सरकार कतरी बढ़िया योजना चलाई है, और यह योजना देखो सन 2007 में शुरू हुई ही, और अणि योजना रा देखो कई लाभ मिले जनर। उद्देश्य योजना रो कि भई कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर 4% तक हासिल करना है सर।
1: हाँ सर, देखो राज्य में वनारी जलवायु, भूगोल और स्थानीय आवश्यकता रे आधार पे योजना वनावरी पूरी छूट देनो भी अंडो उद्देश्य है।
0: और देखो अणि योजना रो एक और प्रमुख उद्देश्य है कि भंडार गृह जो है, या पचे कोल्ड स्टोरेज, या पचे सिंचाई जैसी जो कृषि संबंधी ढांचागत जो सुविधा है वी ने मजबूत करना है, ताकि किसान भाई जो है कणी भी तरीका वणा ने नुकसान नहीं वे।
1: हाँ सर, देखो कृषि व्यवसाय और कृषि स्टार्टअप्स ने वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने, युवा वर्ग जो है वणाने खेतियों जोड़नो भी अंडो एक बहुत बड़ो उद्देश्य है।
0: अणि योजना रो एक और उद्देश्य यो भी है उपासना वैसा के भाई, प्राकृतिक आपदा वे या पचे बाजार री जोखिम वे, अण्यों किसान भाई ने बचाई सका और मनारी आय जो है बढ़ सके, क्योंकि कह ही नहीं सका भाई आजकल मौसम कदी भी बदल जाए, कदी अंधड़ आई रो है न कदी तेज वर्षा आई रही है, ऐसा में किसान भाई री जो मेहनत कर रहा है खेता में वह देखो।

0: उभी तक की फसल में अगर ऐसी आपदा आई जाए तो नुकसान भी जाए, तो
1: हाँ
0: या नुकसान जो है वणा ने नहीं वे बेचा।
1: हाँ सा देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है वणारा लाभ री बात करा तो अणी योजना रो सबो बड़ो लाभ है उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी करनो।
0: और अणी योजना रे तहत किसान भाया ने उन्नत बीज, आधुनिक जो कृषि यंत्र है और दूजो जी भी तकनीकी सहायता है वी सब दी जावे, जणू देखो फसलारी पैदावार भी बढ़े सा।
1: हाँ सा देखो अणी योजना में कुशल संसाधन प्रबंधन जिस तरह की ड्रिप सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य में सुधार वेमाऊँ खेती री लागत भी कम आवे है।
0: और देखो खेता रे अड़े बड़े जो भी है बड़े कोल्ड स्टोरेज गोदाम और अनाज सुखावा वाला जो प्लेटफॉर्म है भी अणी योजना में बनाया जावे, ताकि देखो फसल खराब नहीं वे वे नरियारी दान देखो खेता में यूं ही पड़ी रहे भंडार गृह नहीं वेवारी बजाऊँ ताजा बेकार वे जावे तो असो नहीं वैसा।
1: हाँ सा देखो अणी योजना में कृषि मंडिया ने भी आधुनिक रूप आधुनिक बनाई जावे ताकि कई जो किसान भाई जो है भी अपनी उपज रो सही दाम ले सके।
0: और देखो जनी टाइम पे आपा देखा कि भई अनाज री इंजा भी फसल उत्पादन भी हो है
1: हाँ
0: वो देखो बड़ी मात्रा में वे वणी टाइम पे बाजार में दाम कम वे वे,
1: हाँ
0: अगर वही फसल भंडार गृह में गोदाम में या पचे कोल्ड स्टोरेज में रख दे वहाँ जनी टाइम पे अगर वंडी मांग री कमी है
1: हाँ
0: और कमी वे रही है न सीजन गयो है न पचे अगर मांग वे रही है तो वणी टाइम पे किसान भाई ने बतो दाम मिल जाए सा।
1: हाँ जी बात है साहब भी देखो अणी तरीका हो तो किसान भाई जो है अपनी जो उपज है वनडो ज़्यादा मुनाफो कमाई सके।
0: सही कह रहा हो सा। और देखो मुनाफो जटे किसान भाई कमाएगा तो वणारो मन करेगा कि भाई कई गीत संगीत भी भेजा में।
1: हाँ तो भाई गीत संगीत आप ही होना ही था वणा ने
0: बिल्कुल सा सुनावा बढ़िया सो राजस्थानी गीत।

0: है और मिट्टी में पोषक तत्व वेगा जदि जो है फसल उत्पादन हाउ वेगा तो मिट्टी में नत्रजन वृद्धि रा कई कई लाभ है यो किसान भाई ने बतावा सा।
1: हाँ सा देखो मिट्टी रे मायने नाइट्रोजन तत्व री उपस्थिति और वंडे समुचित प्रबंधन रे लिए वणारा लाभ ने समझनो बहुत ही जरूरी है। और नाइट्रोजन जो है वो पौधा रे लिए बहुत ही जरूरी प्राथमिक पोषक तत्व वे है सा।
0: सही कह रहा हो सा। और देखो नीचे मिट्टी में नाइट्रोजन री उपस्थिति वे जावे और वन में देखो पौधारी जो वानस्पतिक वृद्धि है वन में नाइट्रोजन सहायक वे कोशिका विभाजन वे नाइट्रोजन जो है पौधान में नई कोशिका रो निर्माण करे और वनडे विभाजन री गति ने तेज करे अणु कही पौधारो ढांचो मजबूत वे वे तना और शाखारो विकास भी वे वैसा।
1: हाँ सा देखो मुख्य रूप आप ही कही सका कि पौधा रे ऊपरी हिस्सा जो है तना शाखा और पत्तियारो तेजियों विकास करवारे लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी वेवे है। पौधारो आकार बढ़ावारे लिए भी नाइट्रोजन तत्व ही जिम्मेदार वही सके है कि अगर सही समय पे सही मात्रा में नाइट्रोजन मिले तो पौधा जो है वणारी ऊंचाई भी पूरी वेवे वणारो फैलाव भी पूरो वे और वणियों कही वे कि बाद में फसल अच्छी वेवे।
0: और देखो क्लोरोफिल रो निर्माण और प्रकाश संश्लेषण रो काम भी नाइट्रोजन करे हरो रंग जो है वो नाइट्रोजन हुए वे अण में जो क्लोरोफिल वे वे यो एक अणु एक खास हिस्सों है जो कि अंडे कारण पौधारी पत्तियां घेरी हरी और स्वस्थ नजर आवे। भोजन बनावारी जब पौधारी प्रक्रिया है वणी में भी देखो सूर्य रे प्रकाश ने अवशोषण करने पौधारे वास्ते भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनावे मिट्टी में नाइट्रोजन री अच्छी मात्रा वेगा तो प्रकाश संश्लेषण री दर भी बढ़ जाएगा सा।
1: हाँ सा देखो यदि प्रकाश संश्लेषण सही तरीका हुएगा तो पौधा में ऊर्जा रो स्तर भी ऊँचो रहेगा जड़ियों भी विपरीत परिस्थितियां में भी आसानियों खड़ा रह सकेगा सा।
0: लारे देखो प्रोटीन और अमीनो एसिड रो संश्लेषण भी पौधा रे जीवन रो आधार वे अमीनो एसिड प्रोटीन रे निर्माण रो खंड है और नाइट्रोजन अमीनो एसिड रो खास घटक है अणु कही पौधा रे महीने वेवा वाली जो रासायनिक क्रिया है वने नियंत्रित करवारे वास्ते जो एंजाइम प्रोटीन है ये भी बनता रहे मिट्टी में प्राप्त नाइट्रोजन अणा एंजाइम ने सक्रिय और प्रचुर बनाया राखे
1: हाँ
0: सा।
1: सर देखो नाइट्रोजन जो है वो अनाज की गुणवत्ता ने भी बढ़ावे है। खास तौर गेहूँ मक्का और धान रा दाना में प्रोटीन री मात्रा सीधा तौर पे अणी बात पे निर्भर करे है कि मिट्टी में वणाने कतरो नाइट्रोजन मिलियो है।
0: और देखो फसल उत्पादकता और पैदावार में भी नाइट्रोजन वृद्धि करे है सा।
1: हाँ सा देखो दाणा और फलारा विकास रे लिए नाइट्रोजन रो सही स्तर वेणो बहुत ही जरूरी है। अगर नाइट्रोजन रो सही स्तर वेगा तो पौधा में फूलाऊँ जो फल बनेगा और दाणा बनेगा भी बहुत अच्छा तरीका बनेगा सा।
0: अंडे प्रभाव देखो अनाज रे दाना चमकीला सुडोल और वजनदार बने जनियों कहिए बाजार में किसान भाई ने उपज रो बेहतर दाम मिल सके फसल रो वजन बढ़े चारा वाली जो फसल है वंडे वास्ते भी नाइट्रोजन वरदान है बरसीम जई और सुडान घास जैसी जो चारा री फसल है अनमें नाइट्रोजन नाकवाऊँ बहुत जल्दी और वत्ती मात्रा में हरो चारो आपने मिल सके सा।
1: हाँ सा देखो पौधारी जी आंतरिक प्रणाली है वने मजबूत करवारे लिए भी न्यूक्लिक एसिड रो निर्माण भी नाइट्रोजन हुए वे है। पौधारा आनुवंशिक गुणा में एक पीढ़ियों दूसरी पीढ़ी में भेजवारे वास्ते वणारी वृद्धि ने नियंत्रित करवारे वास्ते डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है।
0: और पौधा में देखो विटामिन बी परिसर जिसरे की थायमिन राइबोफ्लेमिन अनारा निर्माण में भी नाइट्रोजन सहायक है जनियों कही है पौधा आंतरिक रूप स्वस्थ रहे वैसा।
1: पौधा द्वारा जी पोषक तत्व है वणा ने पचावा रे लिए और वणा ने उपयोग करवारी क्षमता वा भी नाइट्रोजन री उपस्थिति रे कारण हुई बढ़े है सा।
0: और देखो मिट्टी में सूक्ष्म जीवारे लाभ री बात करा तो जैविक गतिविधि ने तेजी में बढ़ावे मिट्टी में मौजूद जो लाभकारी बैक्टीरिया है उपासना भैसा बी और कवक है वनारी वृद्धि और ऊर्जा रे वास्ते नाइट्रोजन बहुत जरूरी है वैसा।
1: हाँ सा देखो अंडे अलावा भी देखो कार्बन और ये जो है मिट्टी में जो कार्बन और नाइट्रोजन रो सही अनुपात वो जैविक पदार्थ जिस तरह की गोबरी खाद है या फसल रा अवशेष है वणा ने जल्दी सड़ावे और खाद में बदलवा में मदद करे है सा।
0: स्वस्थ नाइट्रोजन स्तर वेगा तो वह मिट्टी जो है वणी रे महीने केंचुआ और दूजा जो सूक्ष्म जीव है भी बत्ता सक्रिय रहेगा, जनु मिट्टी री बनावट में भी सुधार वेगा सा।
1: हाँ सा। और देखो दूसरा जी पोषक तत्व है वणारी उपलब्धता में भी वृद्धि वेवे जिस

0: नीता भाई साहब, देखो आप ही देखो यार, बार तो बढ़िया सो गीत सुनाए और आप ही तो जानकारी रो खजानो लेन आया हाँसा आज। तो भाई देखो, अपनो जानकारी रो खजानो भी चाल रही हो, हाथे हाथे गीता रो खजानो भी चाल तो जा रही हो, ऐसा आप ही खोलता जाइ जा।
1: तो देखो, गीत ला रहे अबे जानकारी करावा भाई, किसान भाई खेती बाड़ी जुड़िया।

0: वणियों कही है कि सहक्रियात्मक प्रभाव भी वे, जिस तरह की यदि मिट्टी में नाइट्रोजन अगर पूरी मात्रा में वेगा तो पौधारी जड़ारे माध्यमों फास्फोरस और पोटेशियम जैसा जी मुख्य तत्व है भी बहुत ज़्यादा अच्छी कुशलताओं भी सोख सकेगा।
1: जड़ तंत्री जो शुरुआती विकास है वो भी देखो हाउ तरीका वे, हालांकि देखो फास्फोरस जड़ारे वास्ते खास है, लेकिन शुरुआती चरण में नाइट्रोजन जड़ारी गहराई तक जावारे वास्ते बहुत ही ज्यादा जो है वानस्पतिक ऊर्जा दे वैसा।
0: हाँ सा देखो, अंडे अलावा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी जरूरी है सा। और वंडा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ, जिस तरह की दलहनी फसला में आप ही कह सका चना मूंग उड़द और सोयाबीन जैसी फसला में वनारी फसलारी जड़ा में राइजोबियम नाम रो जी बैक्टीरिया है वंडी गांठा पाई जावे हैं, तो ई जी बैक्टीरिया ही हवारी नाइट्रोजन ने सोख लेवे और मिट्टी में स्थिर कर देवे, जणियों मिट्टी री प्राकृतिक उर्वरता वणी रहे और अगली फसल रे लिए रासायनिक यूरिया पे निर्भरता कम बई जावे है।
1: यानी कि लगातार दलहनी फसलारे चक्रों बंजर या कमजोर वे चकी जा मिट्टी है वा पाछे जो है मंडे स्वास्थ्य में सुधार वे जावे।
0: हाँ सा
1: लारेज देखो अगर मिट्टी में जैविक स्रोत हरी खाद कंपोस्ट केचुआ खाद रे माध्यमों नाइट्रोजन रो स्तर सुधर जाएगा तो महंगा जो रासायनिक खाद है वनारो खर्चो भी कम वे जाएगा सा।
0: हाँ सा देखो, जैविक रूप समृद्ध नाइट्रोजन युक्त जो मिट्टी वेगा वंडी जल धारण क्षमता व बेहतर भी जावे, जणियों सूखारी टाइम पे भी फसल बची थकी रह सके है।
1: मिट्टी में देखो नाइट्रोजन री कमियों के ही नुकसान वे वे, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन री कमी वे जाए तो देखो आपा जाना कि भाई पत्तियां पीली पड़ जावे, सब पहला पुरानी वे जावे, नीचे री पत्तियां पीली पड़ने सूखवा लागे, पौधा री वृद्धि रुक जावे, कल्ला फूटना बंद वे जावे, धान और गेहूं जैसी जो फसला है अन्न में कम कल्ला निकले सा।
0: तो मतलब क्या आप कह रहे हो, मतलब यो है कि नाइट्रोजन री मात्रा जत्री उपयुक्त है, जरूरत है वत्री पूरी वेणी जरूरी है, वंडी अगर कमी वेगा तो भी नुकसान वेगा और जरूरत तो ज़्यादा अगर वही जाएगा तो भी नुकसान वेगा।
1: यानी कि संतुलित मात्रा में अगर कई चीज वेवे तो वही जो है लाभप्रद वेवे। तो देखो मिट्टी में नत्रजन री भी संतुलित मात्रा देनी है, तो लारे देखो कार्यक्रम ने भी संतुलन बनानो, एक भाई जानकारी देनी है, लारे गीत संगीत भी देनो है, यो संतुलन भी आपने बनानो है सा।
0: हाँ तो अणिज वास्ते अब आप किसान भैया ने हुणे दा एक और गीत।
1: बिल्कुल सा सुनो सा।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय।

0: की जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
1: तो उपासना वैसा देखो बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनायो, लारे लारे संदेश सुनाया। और देखो यदि कई उत्सव वे ये त्यौहार वे दिवस वे तो वंडी जानकारी भी आपा किसान भाई ने करावा। तो आज देखो बलिदान दिवस है बिरसा मुंडा जी रो।
2: हाँ सा देखो महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा रो बलिदान दिवस जो है वो हर साल 9 जून यानी कि आज रे दिन मनायो जावे है और इन्हें शहीद दिवस भी केवे है सा।
1: यो दिन देखो महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक बिरसा मुंडा री शहादत ने याद दिलावे, जना अंग्रेजा और सामंता रे शोषण रे खिलाफ उल गुलान यानी महाविद्रोह रो नेतृत्व की दो हो।
2: और बिरसा मुंडा जो है भी एकेश्वर वादरी राह वना सब ने दिखाई ही वना आदिवासिया ने बतायो कि बहुत सारा देवी देवता ने पूजारी बजाए केवल एक ही ईश्वर मान ईश्वर रो एक रूप मानने वंडी पूजा करनी चाहिए।
1: वना देखो समाज में फैलिया तका जो अंधविश्वास है, जादू टोना या पछे बलि प्रथा, ये सब जो कुरूतियां है अनारो कड़ो विरोध की दो। लोगा ने मद्यपान शराब और दूजा जो नशीला पदार्थ है वणा ने त्याग बारे वास्ते प्रेरित भी की दो सा।
2: हाँ सा। और देखो वणा ने आदिवासियां जो आदिवासियां री संस्कृति बचावारे वास्ते वणा आदिवासी लोग जो है वणा ने वण पे गर्व है, वणा ने खुद ने भी अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व हो। और वणा यो भी क्योंकि भी कणी रे भी लालच में आई ने अपनी संस्कृति ने नी छोड़नो है।
1: बिरसा मुंडा देखो ब्रिटिश सरकार रो विरोध भी की दो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है आदिवासियारी जो पारंपरिक सामूहिक खेती री व्यवस्था ही विने खत्म कर दी दो हो। जमींदारी और साहूकारी जो प्रथा ही वना ने लागू की दो और जमीन जो है वनारी ले ली दी हिस्सा।
2: तो देखो वणा यो एक नारो भी दीदो हो कि अबुआ राज एते जाना महारानी राज टूंडू जाना, यानी कि अबे अपनो राज शुरू हुई गयो है और महारानी रो राज खत्म हुई गयो है।
1: वणा तीर कमान और कुल्हाड़ी उनलेस आदिवासी सेना भी बनाई तो अणी तरीका उन जो है वणा गुरिल्ला योद्धा नीति अपनाई ही सा।
2: हाँ सा। तो अणी वास्ते भाई देखो आज रे दिन वणारो जो बलिदान दिवस है वने आपी वणा ने याद करा हाँ आज रे दिन और वणा जो बलिदान दीदो है वणी प्रेरणा लेने आपी भी अपने देश रे लिए अपने समाज रे लिए कई करवारे वास्ते प्रेरित वहाँ सा।
1: और देखो आप एक कार्यक्रम में देखो जानकारी तो आप आकर ही है, चलता चलता आपको तो एक और राजस्थानी गीत सुनाई था।
2: हाँ सा।

0: तो नीता भाई सा देखो तो बढ़िया सु गीत हुणायो और अब अपने कार्यक्रम रो टाइम वही गयो है तो आप ही विदा लेवा सा। जय जवान
1: जय किसान।

कार्यक्रम खेती और घर अभी आपने सुना, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, और इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बोल राधा बोल से। आवाजें हैं सुरेश वाडकर और साधना सरगम की।

0: चमेली फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार संध्या और 9 बजे सुनिएगा News@9। कृपया प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
3: The amount of time we have spent
4: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल,

0: गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कम्प्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनते हैं नई फिल्मों से फिल्मी तराने। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं धुरंधर 2 फिल्म से बॉम्बे रॉकर्स की आवाज में ये गीत।

मेट्रो इन दिनों इस फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आइए सुनवाते हैं अगला गीत स्त्री 2 फिल्म से, और इस गीत को गाया है अमिताभ भट्टाचार्य और सचिन जिगर ने।

सैयारा फिल्म का गीत अभी आपने सुना विशाल मिश्रा और हंसी का पारिक की आवाज़ों में। आइए सुनवाते अगला गीत भूल भुलैया 3 फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं।

ब्लू फिल्म का गीत अभी आपने सुना विजय प्रकाश और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। आइए सुनवाते हैं अगला गीत छलांग फिल्म से। इसे गाया है हनी सिंह और स्वीट्स बरार ने।

चीनी कम फिल्म का गीत अभी आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज़ में। आइए सुनवाते हैं अगला गीत ब्रह्मास्त्र फिल्म से अरिजीत सिंह और जोनीटा गांधी की आवाज़ में।

हिट स्टोरी 2 फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अरिजीत सिंह और समीरा कोपिकर की आवाज़ें थी। आइए सुनवाते हैं अगला गीत हमारी अधूरी कहानी फिल्म से, अभी मिश्रा की आवाज़ में।

शुद्ध देसी रोमांस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं जसपिंदर नारूला की आवाज़ में, फिल्म है जानम समझा करो।

इस खूबसूरत से गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Minister

Everybody, bye-bye.